0: FM 100's time check. It's 7 a.m. This public service message is brought to you by FM 100. गाड़ी चलाते वक्त ये ना सोचिए कि सिर्फ आपकी गलतियां हादसात का सबब बन सकती हैं। दूसरों की गलतियों के लिए भी तैयार रहिए। ट्रैफिक कवानीन की पाबंदी कीजिए।
1: FM 100 Like us on facebook.com/FM247365
2: FM247365
0: 31 years of memory, milestone and moments. FM 100 Pakistan. It's a legacy.
3: Assalamu alaikum, Pakistan. Let's celebrate the journey.

0: 7:15 a.m. This time check is brought to you by Dr. Hamid General Homeo and Schwabe Germany, proudly serving Pakistan with the best of homeopathy for 75 remarkable years.
1: जब बात आपकी सेहत की हो तो खालिस्पन बहुत अहमियत रखता है। शोबे मयार की सख्त जांच पड़ताल करता है ताकि इस बात को यकीनी बनाया जा सके कि हर दवा असली और काबिले भरोसा हो। डॉक्टर हमीद जनरल होमियो और शोबे जर्मनी पिछले 75 सालों से सेहतमंद पाकिस्तान के लिए कोशां।
2: गली मोहल्लों में सफाई का खास ख्याल रखें, कहीं पर पानी खड़ा ना होने दें। डेंगू जानलेवा मर्ज है, इलाज से बेहतर एहतियात है। This public service message is brought to you by FM 100.
3: कभी सोचा है कि अब जंग की सूरत क्या है? अब जंग मैदान-ए-जंग में नहीं, हमारे जहनों में लड़ी जा रही है। अब दुश्मन की गोलियां बारूद नहीं, मालूमात हैं, और निशाना हम सब। रियासत मुखालिफ ताकतें हमारे घरों के दरवाजे तक पहुंच चुकी हैं। टेक्नोलॉजी और इंटरनेट के पर्दे में दुश्मन छुपा बैठा है। वो ढूंढता है कमजोर लम्हे, बेरोजगार नौजवान, जरूरतमंद खानदान, फिर उनके सामने बिछाता है ख्वाब, बड़ी नौकरी, तेज दौलत, बैरून मुल्क सफर, और फिर कभी रिपोर्टर की सूरत में कभी एनजीओ वर्कर या फ्रीलांसर बनकर उनसे वो राज निकलवाता है जो दुश्मन का रास्ता खो देते हैं, जिनसे बदमनी, खौफ और फसाद हमारे गली कूचों तक उतर आते हैं, हमें अपनी ही मट्टी के खिलाफ खड़ा कर देता है। जो आपसे मालूमात लेता है वो आपकी जात तक पहुंचता है, आपकी तस्वीरें, पहचान, फोन, सब कुछ खतरे में डाल देता है। तो याद रखिए, किसी अजनबी को अपनी कोई हसास बात ना दीजिए। कोई मशकूक चीज, कॉल या पेशकश हो, फौरन रिपोर्ट कीजिए। हसास मकामात बस अपने इदारे तक रखिए, क्योंकि हर लफ्ज, हर क्लिक, हर तस्वीर या तो हिफाजत है या खतरा। फैसला आपके हाथ में है।
2: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया।
4: facebook.com/fm247365 fm247365

0: dedication for maximum music.
1: FM 100's time check. It's 8 a.m.
2: जब जिंदगी एक लफ्ज से रुक सी जाए, कैंसर, सिर्फ एक बीमारी नहीं, एक इम्तिहान है। हर दिन एक जंग से कम नहीं, एक ऐसी जंग जिसमें बहुत से लोग नाउम्मीद हो जाते हैं। मगर अब मायूसी उम्मीद में बदल रही है। डाउ कॉम्प्रिहेंसिव कैंसर सेंटर, हुकूमत सिंध का वो कदम जहां कैंसर का इलाज अब एक नए मायार पर मुमकिन है। गामा नाइफ एडवांस टेक्नोलॉजी के जरिए ब्रेन ट्यूमर का बगैर सर्जरी के इलाज किया जाता है, जो उमूमन एक ही दिन में मुमकिन होता है, और इसके जरिए एडवांस स्टेज ब्रेन ट्यूमर्स यानी तीसरे और चौथे स्टेज के साथ मल्टीपल मेटास्टेटिस का इलाज भी मुमकिन है। जदीद तरीन MR लिनक मशीन की बदौलत अब कैंसर जिस्म के किसी भी हिस्से में छुप नहीं सकता। दौरान इलाज इसे बराह रास्त देखा जा सकता है और रेडिएशन को उसके रिएक्शन के मुताबिक फौरन एडजस्ट किया जाता है। यहाँ पूरे पाकिस्तान से आए हुए लोगों का इलाज मुफ्त किया जाता है। अब कैंसर का फौरी इलाज ख्वाब नहीं, हकीकत बन चुका है, जो हुकूमत सिंध और चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी के विजन से मुमकिन हुआ। क्योंकि ये सिर्फ इलाज नहीं, उम्मीद है हर उस चेहरे की जो जीना चाहता है। खिदमत में सबसे आगे सिंध।
3: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ अपने ख्वाबों और बिजनेस को दे आजादी की उड़ान। मुफ्त IBFT, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ अकाउंट खोलें डिजिटली या विजिट करें अपनी करीबी HBL ब्रांच। HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां ख्वाब वहां HBL।

0: महराना देखभाल में फितरत परवान चढ़ती है। शॉबिंग सिंगल रेमेडीज मखसूस हर्बल फार्म्स और नबताती बागा से हासिल की जाती हैं, ताकि आपको ऐसा मयार मिले जिस पर आप मुकम्मल भरोसा कर सकें। डॉक्टर हमीद जर्नल होम्यो और शॉब जर्मनी के पाकिस्तान में 75 साल सिर्फ सेहतमंद पाकिस्तान के नाम।
1: बेहतरीन इंश्योरेंस हर वक्त आपके साथ, जैसे इजी पैसा इंश्योरेंस मार्केट प्लेस, 50 से ज्यादा प्लान, बेहतरीन कवरेज, खास डिस्काउंट्स और सिर्फ 24 घंटों में क्लेम हासिल करने की सहूलत। कवर 3 के लिए डेडिकेटेड प्लान और 25,000 टॉप डॉक्टर से कंसल्टेशन भी। अभी इजी पैसा ऐप पर इंश्योरेंस मार्केट प्लेस एक्सप्लोर करें। इजी पैसा डिजिटल बैंक, इजी वाला बैंक।
2: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ मुफ्त IBFT, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां खाब वहां HBL।
3: हायर कर नया नो फ्रॉस्ट IoT रेफ्रिजरेटर, जिसका मल्टी एयर फ्लो सिस्टम दे बैलेंस्ड कूलिंग हर कंपार्टमेंट में और रखे आपके रेफ्रिजरेटर को क्लीन। ट्विन इन्वर्टर टेक्नोलॉजी, जिससे मिले मैक्सिमम कूलिंग और एनर्जी सेविंग। नो फ्रॉस्ट, नो वरीज।
2: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ मुफ्त IBFT, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां खाब वहां HBL।
3: हायर नो फ्रॉस्ट IoT रेफ्रिजरेटर, इसकी IoT टेक्नोलॉजी फूड एक्सपायरी नोटिफिकेशन के साथ साथ आपको दे मोबाइल ऐप से कंप्लीट कंट्रोल। नो फ्रॉस्ट, नो वरीज।
4: टैक्स पे करना अब हुआ आसान। अभी JazzCash ऐप डाउनलोड करें और अपना टैक्स पे करके लकी ड्रॉ में शामिल हो जाएं और जीतें इलेक्ट्रिक स्कूटर। आसान पेमेंट्स और एक्साइटिंग रिवॉर्ड्स के लिए JazzCash है ना।
5: नाजरीन, ताज़ा तरीन खबर से आपको आगाह करेंगे कि पूरे शहर में फैल चुकी है आपके टॉयलेट की बदबू।
6: बंद करो ना ढक्कन।
7: स्वीपी क्लीन करे तेजी से सख्त दाग और जरासीम का खात्मा और रखे टॉयलेट को चमकता हुआ साफ।
8: शेयर बंडल्स, वो भी डिस्काउंट पर। सब्सक्राइब करना तो बनता है, तो बस अभी JazzCash ऐप से Jazz B5 फैंटास्टिक बंडल लगाओ और पाओ 2,000 रुपए तक का बेहतरीन डिस्काउंट अपने फेवरेट बंडल्स पर। बड़े डिस्काउंट्स के लिए JazzCash है ना।
9: This program is brought to you by
3: Hire Kar Naya No Frost IoT Refrigerator, Twin Inverter Technology, jisse mile maximum cooling aur energy saving. No frost, no worries.
10: And Phoenix laga aur bhul ja, Phoenix laga aur bhul ja.
7: And Sweepy Clean kare tezi se sakht daag aur jarasim ka khatma aur rakhe toilet ko chamakta hua saaf.
2: And HBL Freedom Account, jahan khwab wahan HBL. And

0: 9:15 AM. This time check is brought to you by Dr. Hamid General Homeo and Schwabe Germany, proudly serving Pakistan with the best of homeopathy for 75 remarkable years.
1: HBL Freedom Account के साथ अपने ख्वाबों और बिजनेस को दे आजादी की उड़ान. मुफ्त IBFT, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ अकाउंट खोले डिजिटली या विजिट करें अपनी करीबी HBL ब्रांच. HBL Freedom Account, जहां ख्वाब वहां HBL.
2: आम चीजों पर समझौता क्यों करें? शॉबे सिंगल रेमेडीज मुस्तनद जर्मन महारत के साथ तैयार करदा कुदरत के बेहतरीन नज़ा लाए हैं ताकि आपकी सेहत की बेहतरीन देखभाल हो सके. डॉक्टर हमीद जर्नल होमियो और शॉबे सिंगल रेमेडीज, भरोसे देखभाल और जर्मन महारत के 75 साल.
1: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ मुफ्त IBFT, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां खा वहां HBL.
3: हायर नो क्रॉस IoT रेफ्रिजरेटर. इसकी IoT टेक्नोलॉजी फूड एक्सपायरी नोटिफिकेशन के साथ साथ आपको दे मोबाइल ऐप से कंप्लीट कंट्रोल. नो फ्रॉस्ट, नो वरीज.
4: शेयर बंडल्स, वो भी डिस्काउंट पर. सब्सक्राइब करना तो बनता है, तो बस अभी जैस कैश ऐप से जैस V5 फैंटास्टिक बंडल लगाओ और पाओ 2,000 रुपए तक का बेहतरीन डिस्काउंट अपने फेवरेट बंडल्स पर. बड़े डिस्काउंट्स के लिए जैस कैश है ना.
0: This program is brought to you by
3: Hire Kan Naya No Frost IoT Refrigerator. Two inverter technology jisse mile maximum cooling aur energy saving. No frost, no worries.
0: And
5: Phoenix laga aur bhul ja. Phoenix laga aur bhul ja.
0: And
6: sweep be clean. Kare tezi se sakht daag aur jarasim ka khatma aur rakhe toilet ko chamakta hua saaf.
1: And HBL Freedom Account. Jahan khwab, wahan HBL.

अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी वेरी वेरी गुड मॉर्निंग. आप सुन रहे हैं गुड मॉर्निंग पाकिस्तान और मैं हूं आपकी दोस्त आपकी होस्ट आजय सुमिया. और कैसी जा रही है आपकी मंडे मॉर्निंग? मेरी बस ओके जा रही है. मौसम अच्छा है और इस अच्छे मौसम में अच्छी वाइब है आज. मतलब शहर की बस दिल चाह रहा है कि चलो कहीं चले जाते हैं, कुछ नहीं तो काम पे ही चले जाते हैं. और अच्छे दिन के लिए जरूरी है कि आप अपनी सुबह का आगाज करें अल्लाह ताला के जिक्र से, अल्लाह ताला के बहुत ज्यादा शुक्र से. हम पढ़ रहे हैं आज सूरह इन्फितार का तर्जुमा. आगे पढ़ते हैं अऊज़ु बिल्लाह मिनश शैतान रजीम बिस्मिल्लाह रहमान रहीम. हम पढ़ रहे हैं हम तो रे भी जो है ना बुरा टकता है. पढ़ रहे हैं हम आयत नंबर 10 से. मौजिज लिखने वाले वो जानते हैं जो कुछ तुम करते हो. बेशक नेक लोग जरूर चैन में जाने वाले हैं और बेशक बदकार जरूर दोजख में हैं. इंसाफ के दिन इसमें जाएंगे और इससे कहीं छुप ना सकेंगे. और तुझे क्या मालूम इंसाफ का दिन क्या है? फिर तुझे क्या मालूम कि इंसाफ का दिन क्या है? जिस दिन कोई जान किसी जान के लिए कुछ इख्तियार ना रखेगी और सारा हुक्म उस दिन अल्लाह का होगा. तो आप सुन रहे थे ये सूरह इन्फितार का तर्जुमा. कुरान शरीफ जब भी पढ़े समझ के लिए समझ के पढ़े, इल्म हासिल करने के लिए पढ़े, अपनी नॉलेज बढ़ाने के लिए पढ़े. सवाब तो मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन सिर्फ सवाब की गर्ज से लोग पढ़ते जा रहे हैं पढ़ते जा रहे हैं पढ़ते जा रहे हैं और उनकी जिंदगी में कुछ भी बदलाव नहीं आ रहा. तो बदलाव जब भी आता है जब आप कुरान को उसी नीयत से पढ़ें जिससे आपको ज्यादा से ज्यादा अल्लाह ताला की कुर्बत नसीब हो. और अभी हम आपके लिए जो है ना वो ये ट्रैक प्ले कर रहे हैं. आइए सुनते हैं.

0: us on facebook.com/FM247365. FM 100 traffic update.
1: ट्रैफिक अपडेट के साथ मैं हूं फरोखार। कराची की सड़कों और शाहराहों पर ट्रैफिक की इस वक्त सूरत हाल कुछ इस तरह है। एफएम 100 को मिलने वाले इतला के मुताबिक मंजिल पंप से कायदाबाद और वहां से मजीद सिटी की जानब आने वाले ट्रैक पर इस वक्त ट्रैफिक का कुछ दबाव देखा जा रहा है। अख्तर कॉलोनी सिग्नल से पंजाब चौरंगी की जानब जाने वाला ट्रैफिक भी इस वक्त स्लो है, जबकि कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया से वो ट्रैफिक जो इस वक्त गोदाम चौरंगी से सिंगर चौरंगी की जानब जा रहा है उस पर भी ट्रैफिक का कुछ दबाव है, जबकि वो ट्रैफिक जो यूनिवर्सिटी रोड से गुजर रहा है और सफूरा चौरंगी से इस वक्त नीपा चौरंगी की जानब जा रहा है, दरमियानी रास्ते पर तामीरी काम जारी होने की वजह से ट्रैफिक की रवानी इस वक्त स्लो है। वो तमाम लोग जो इन रास्तों पर सफर करना चाहते हैं अपने टाइम को मैनेज करते हुए आए ताकि बर वक्त अपनी मंजिलों पर पहुंच सके। मजीद अपडेट रहने के लिए सुनते रहिए एफएम 100 पाकिस्तान।
0: दिस ट्रैफिक अपडेट वॉज ब्रॉट टू यू बाय एफएम 100।

0: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ मुफ्त IBFT, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां खाब वहां HBL।
1: हायर कर नया नो फ्रॉस्ट IoT रेफ्रिजरेटर, जिसका मल्टी एयर फ्लो सिस्टम दे बैलेंस्ड कूलिंग हर कंपार्टमेंट में और रखे आपके रेफ्रिजरेटर को क्लीन। ट्विन इन्वर्टर टेक्नोलॉजी, जिससे मिले मैक्सिमम कूलिंग और एनर्जी सेविंग। नो फ्रॉस्ट, नो वरीज।
2: शेयर बंडल्स, वो भी डिस्काउंट पर। सब्सक्राइब करना तो बनता है, तो बस अभी जैस कैश ऐप से जैस V5 फैंटास्टिक बंडल लगाओ और पाओ 2,000 रुपए तक का बेहतरीन डिस्काउंट अपने फेवरेट बंडल्स पर। बड़े डिस्काउंट्स के लिए जैस कैश है ना।
0: This program is brought to you by
1: Hire Kar Naya No Frost IoT Refrigerator, Twin Inverter Technology, jisse mile maximum cooling aur energy saving. No frost, no worries.
0: And
3: Phoenix laga aur bhul ja, Phoenix laga aur bhul ja.
0: And
4: sweep be clean, kare tezi se sakht daag aur jarasim ka khatma, aur rakhe toilet ko chamakta hua saaf.
0: And HBL Freedom Account, jahan khwab wahan HBL.

0: तेजी से फैलती डिजिटल दुनिया एक जबरदस्त सलाहियत के साथ साथ एक अहम जिम्मेदारी भी। मजहबी, फिरका वाराना या नस्ली बुनियाद पर नफरत अंगेजी, दहशत गर्दी की तरगीब से मुतल्लिक किसी भी तरह का मवाद फैलाना, इलेक्ट्रॉनिक जालसाजी, स्पैमिंग, धोखादही, बशमूल आइडेंटिटी थेफ्ट, चाइल्ड पोर्नोग्राफी और साइबर स्टॉकिंग और अनचाही मुदाखलत, मसलन किसी भी फर्द से जबरदस्ती या बार बार राबिता करना, मुतल्लिका शख्स की रजामंदी के बगैर उसकी तस्वीर या वीडियोस बनाना और शेयर करना वगैरह संगीन जराइम है। इस तरह की खिलाफ वर्जियाँ पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट और दीगर कानून के तहत कानूनी नतायज की मुतहम्मिल हैं। अगर आप इस बारे में कोई सवाल करना, इस सिलसिले में मदद तलब करना, किसी वाकये की इत्तला देना या इन कानून की खिलाफ वर्जी के मुर्तकिब अफराद के बारे में हुकूमत की मुआवनत करना चाहते हैं तो बराह करम हमारी हेल्पलाइन पर कॉल करें।
1: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया। बच्चों का ऑनलाइन तहफ्फुज आपकी जिम्मेदारी है। अपने बच्चों को ऑनलाइन राब्तों का महफूज तरीका इस्तेमाल सिखाएं। इंटरनेट के जरिए खेलों, तफरी और तालीमी सरगर्मियों में शामिल होने के फवायद जरूर हैं, लेकिन इसमें नामुनासिब मवाद, साइबर बुलिंग और दीगर ऑनलाइन नुकसानात जैसे मुमकिन खतरात भी मौजूद हैं। वालिदैन और असातिज़ा की जानिब से बच्चों की निगरानी और रहनुमाई न होने की सूरत में बच्चे बासानी मनफी सरगर्मियों का शिकार हो सकते हैं। वालिदैन को अपने बच्चों की ऑनलाइन सरगर्मियों के हवाले से आगाह और होशियार रहने की जरूरत है। बच्चों को नुकसानदेह मवाद जैसे नफरत अंगेज तकरीर, गुस्ताखाना और फहश मवाद वगैरह अपलोड और शेयर करने के कानूनी नतायज के हवाले से भी शऊर और आगाही इंतहाई अहमियत की हामिल है। पीटीए की वेबसाइट पर पेरेंटल कंट्रोल सॉफ्टवेयर की एक फहरिस्त दस्तियाब है ताकि वालदैन अपने बच्चों की ऑनलाइन सरगर्मियों की निगरानी करते हुए उन्हें ऑनलाइन नुकसान से महफूज रखें। www.pta.gov.pk। मुफाद आमा के लिए ये पैगाम FM 100 और हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया।
2: पाकिस्तान हमसे है, हम अच्छे तो पाकिस्तान अच्छा। तो आओ अहद करें कि जैसा पाकिस्तान हम देखना चाहते हैं वैसे खुद बनकर दिखाएंगे, क्योंकि हम बदलेंगे तो बदलेगा पाकिस्तान। अज़्म-ए-इस्तेहकाम, मुस्तहकम पाकिस्तान।
1: मुफादे आम्मा के लिए पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया।
3: ख्वाब तो सब देखते हैं बेहतर रोजगार का, मगर इस ख्वाब की ताबीर के गैर कानूनी जराए खतरनाक रस्तों पे ले जा सकते हैं, जहां मौत मुंह खोले आपकी मुंतजर है।
4: हमने आप लाख उसे तीन बार मौत देखे
5: टाइम से ऐसे ही के मैं हूँ, कब्र से चला गया, मैं नहीं बचा।
6: फिर उन्होंने वीडियो बनाया, सानू मारिया, सब छुटिया।
3: अपने ख्वाबों की तकमील के लिए कानूनी रास्ता इख्तियार करें।
7: एम्बेसी के थ्रू प्रॉपर वे में सबमिट करवाया और बहुत ही जल्दी मेरा वीजा लग गया था वर्क वीजा।
3: इंसानी स्मगलिंग में मुलविस गिरोहों के सद्देभाव के लिए वज़ीरे आज़म पाकिस्तान की सरबराही में खुसूसी टास्क फोर्स का क़याम, मुल्कगीर क्रैकडाउन जारी, एजेंट्स और सरकारी अहलकारान के खिलाफ मुकदमात का इंदराज, गिरफ्तारियां, जायदादों की जब्तगी और बैंक अकाउंट्स मुंजमद किए जा रहे हैं। अंदरूनों बैरूने मुल्क बेहतर रोजगार के लिए प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम और नेफटेक के जदीद तरीन और मुफ्त कोर्सेज में अभी दाखिला लें। मकामात मुकद्दसा की ज़ियारत को जाने वाले ज़ायरीन भी कानूनी ज़रा इख्तियार करें। इंसानी स्मगलरों के चंगुल से बचे, ख्वाब जरूर देखें, बेहतर रास्ता चुने। हुकूमत पाकिस्तान।
1: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया।
8: FM 24/7 365।
9: किसी भी इंसान के लिए सबसे अहम होती है उसकी सेहत।
10: किसी भी शख्स को देख के उसकी सेहत के बारे में अंदाजे ना लगाओ।
9: मुझे पता है कि मेरा वजन ज्यादा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं वॉक नहीं करता।
11: जी हाँ, मुझे भी लोग मोटी कहते हैं, मगर ऐसा नहीं कि मैं बहुत खाती हूँ।
10: हम बिना किसी तहकीक के बस बातें बनाने का फन जानते हैं। सामने वाले पर क्या गुजरी हमें से क्या।
9: मैं ओबेसिटी का शिकार हूँ, सिर्फ वॉक्स से ये कम नहीं।
11: मोटापा एक बीमारी है, सिर्फ मीठा ना खाने से खत्म नहीं होगी।
10: सिर्फ बातें बनाने से हम इसका मुकाबला नहीं कर सकते।
11: अभी इसी वक्त अपना BMI चेक करवाइए,
9: यानी अपने वेट को अपनी हाइट की मुनासिबत से जांचिए
10: और इस वजन की असल हकीकत को समझिए।
9: आइए वेट से आगे का सोचें।
1: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया।

जी आप सुन रहे हैं गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। होपफुली आपकी मॉर्निंग अच्छी जा रही होगी और आप मंडे मॉर्निंग को बड़े अच्छे अच्छे मूड में जा रहे होंगे अपने ऑफिस या जहां पे भी आप जा रहे हैं। और अभी हम बात कर रहे हैं कि किन मौकों पर, ये हमारा आज का टॉपिक है कि किस मौके पर आपको कभी भी खामोश नहीं रहना चाहिए। और गुलिस्तान जौहर का हाल बुरे से बुरा होता जा रहा है। यूनिवर्सिटी रोड तो वैसे भी बड़ा हसीन है, सोचे भी बारिशें खुल के हुई नहीं है तो हाँ जहां जहां खड्डे वहां पानी। तो मैं कहती हूँ गुलिस्तान जौहर के लोग कब निकलेंगे अपने हक की आवाज के लिए, मुझे समझ में नहीं आता कि मतलब क्या कर रही है खवातीन अपने वेलनों के साथ। मैं तो कह रही हूँ वेलन मार्च करें और वेलन मार्च करें और बैठ जाए सड़कों में, इतनी गंदी सड़कें, अच्छा वो भी इतनी गंदी कि वहां बैठ भी नहीं सकता बंदा एहतजाज के अंदर। कम से कम इंडिया के अंदर रोड का ना बुरा हाल ही था कि लोग रोड पर बैठ तो सकते थे, हमारे तो रोड ही। हाँ अब मुझे समझ आया कि रोड क्यों नहीं बनवाते, कि गलती से लोग एहतजाज के लिए रोड पर ही ना बैठ जाए तो रोड ऐसे गंदे रखो लोग बुरे आए हैं इधर कौन बैठेगा भूख हड़ताल करने। खैर आप भूख हड़ताल ना करें लेकिन कम से कम अपने हक के लिए गुलिस्तान जौहर वालों को जरूर निकलना चाहिए। बहुत ही बुरा हाल है गुलिस्तान जौहर का। और जो लोग यहाँ पे फ्लैट लेने की सोच रहे हो, कराची के अंदर कौन लोग हैं जो फ्लैट्स में फ्लैट्स बनाए जा रहे हो, करोड़ों रुपए उनकी आपने वो रखी हुई है। रोड्स का हाल देखो शहर के, इसकी तो प्रॉपर्टी की क्या कीमत होनी चाहिए। ना ये रोड्स हैं, ना यहाँ पे गैस आती है, पानी का तो कुछ पता ही नहीं है। पानी जब बारिश में होता है तो हम नजर आता है कि चलो पानी आ रहा है, टैंकर माफिया यहाँ सरगर्म है। तो मैं समझ में, कराची वाले किस बात का इंतजार कर रहे हैं एहतजाज के लिए और अपना हक के लिए उठाने बहाने करने के लिए। कुछ सीखें आप लोग, कुछ सीखें। ये आप देखें बच्चों ने जो है ना वो एजुकेशन मिनिस्टर से आप क्या कहते हैं रिजाइन करवा लिया। वैसे हम भी करवा सकते हैं ना। मैं तो सोची थी टॉपिक ये रखूंगी किस किस पॉलिटिशियन का आपको रेजिग्नेशन चाहिए, तो मुझे लगा था कुछ ज्यादा ही सियासी हो जाएगा। मुझे तो मैं बोली सब लिखी हुई जाते ऑल ऑफ देम। और क्योंकि साइड तो कोई किसी पॉलिटिशियन की नहीं, फिर पता नहीं लोग ये हमारे सियासतदान किस बात पे इतराते हैं। और राइट कई बातें हमारी जा रही है, टाइम रहेगा थोड़ा सा कम तो थोड़ा सा गाना वाना सुन ही लेते हैं। तो आइए सुनते रोलिंग स्टोन्स का ये ट्रैक सेटिस्फैक्शन।

0: FM 100's time check. It's 9 a.m.
1: जब जिंदगी एक लफ्ज से रुक सी जाए, कैंसर, सिर्फ एक बीमारी नहीं, एक इम्तिहान है। हर दिन एक जंग से कम नहीं, एक ऐसी जंग जिसमें बहुत से लोग नाउम्मीद हो जाते हैं, मगर अब मायूसी उम्मीद में बदल रही है। डाउ कॉम्प्रिहेंसिव कैंसर सेंटर, हुकूमत सिंध का वो कदम जहां कैंसर का इलाज अब एक नए मायार पर मुमकिन है। गामा नाइफ एडवांस टेक्नोलॉजी के जरिए ब्रेन ट्यूमर का बगैर सर्जरी के इलाज किया जाता है, जो उमूमन एक ही दिन में मुमकिन होता है, और इसके जरिए एडवांस स्टेज ब्रेन ट्यूमर्स यानी तीसरे और चौथे स्टेज के साथ मल्टीपल मेटास्टेटिस का इलाज भी मुमकिन है। जदीद तरीन MR लिनक मशीन की बदौलत अब कैंसर जिस्म के किसी भी हिस्से में छुप नहीं सकता, दौराने इलाज इसे बराह रास्त देखा जा सकता है और रेडिएशन को उसके रिएक्शन के मुताबिक फौरन एडजस्ट किया जाता है। यहाँ पूरे पाकिस्तान से आए हुए लोगों का इलाज मुफ्त किया जाता है। अब कैंसर का फौरी इलाज ख्वाब नहीं हकीकत बन चुका है, जो हुकूमत सिंध और चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी के विजन से मुमकिन हुआ, क्योंकि ये सिर्फ इलाज नहीं उम्मीद है हर उस चेहरे की जो जीना चाहता है। खिदमत में सबसे आगे सिंध।
2: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ अपने ख्वाबों और बिजनेस को दे आजादी की उड़ान। मुफ्त IBFT, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ अकाउंट खोले डिजिटली या विजिट करें अपनी करीबी HBL ब्रांच। HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां ख्वाब वहां HBL।
3: हायर का नया नो फ्रॉस्ट IoT रेफ्रिजरेटर, जिसका मल्टी एयर फ्लो सिस्टम दे बैलेंस्ड कूलिंग हर कंपार्टमेंट में और रखे आपके रेफ्रिजरेटर को क्लीन। टू इन्वर्टर टेक्नोलॉजी जिससे मिले मैक्सिमम कूलिंग और एनर्जी सेविंग। नो फ्रॉस्ट, नो वरीज।
4: शेयर बंडल्स, वो भी डिस्काउंट पर। सब्सक्राइब करना तो बनता है, तो बस अभी जैस कैश ऐप से जैस V5 फैंटास्टिक बंडल लगाओ और पाओ 2000 रुपए तक का बेहतरीन डिस्काउंट अपने फेवरेट बंडल्स पर। बड़े डिस्काउंट्स के लिए जैस कैश है ना।
5: नाजरीन, ताजा तरीन खबर से आपको आगाह करेंगे कि पूरे शहर में फैल चुकी है आपके टॉयलेट की बदबू।
6: बंद करो ना ढक्कन।
7: स्वीपी क्लीन करे तेजी से सख्त दाग और जरासीम का खात्मा और रखे टॉयलेट को चमकता हुआ साफ।
2: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ मुफ्त IBFT, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां ख्वाब वहां HBL।
3: हायर नो क्रॉस IoT रेफ्रिजरेटर, इसकी IoT टेक्नोलॉजी फूड एक्सपायरी नोटिफिकेशन के साथ साथ आपको दे मोबाइल ऐप से कंप्लीट कंट्रोल। नो फ्रॉस्ट, नो वरीज।
8: बेहतरीन इंश्योरेंस हर वक्त आपके साथ, जैसे इजी पैसा इंश्योरेंस मार्केट प्लेस, 50 से ज्यादा प्लान्स, बेहतरीन कवरेज, खास डिस्काउंट्स और सिर्फ 24 घंटों में क्लेम हासिल करने की सहूलत, कवर 3 के लिए डेडिकेटेड प्लान्स और 25,000 टॉप डॉक्टर्स से कंसल्टेशन भी। अभी इजी पैसा ऐप पर इंश्योरेंस मार्केट प्लेस एक्सप्लोर करें। इजी पैसा डिजिटल बैंक, इजी वाला बैंक।
2: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ मुफ्त IBFT, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां ख्वाब वहां HBL।

0: It's 9:15 a.m. This time check is brought to you by Dr. Hamid General Homeo and Schwabe Germany, proudly serving Pakistan with the best of homeopathy for 75 remarkable years.
1: HBL Freedom Account ke saath muft IBFT, muft checkbook, muft online banking aur behtareen mobile app ki sahulat ke saath HBL Freedom Account, jahan khwab wahan HBL.
2: महिराना देखभाल में फितरत परवान चढ़ती है. शॉबे सिंगल रेमेडीज मखसूस हर्बल फार्म्स और नबताती बागा से हासिल की जाती हैं, ताकि आपको ऐसा मयार मिले जिस पर आप मुकम्मल भरोसा कर सकें. डॉक्टर हमीद जनरल होमियो और शॉबे जर्मनी के पाकिस्तान में 75 साल सिर्फ सेहतमंद पाकिस्तान के नाम.
3: हायर नो फ्रॉस्ट आईओटी रेफ्रिजरेटर, इसकी आईओटी टेक्नोलॉजी फूड एक्सपायरी नोटिफिकेशन के साथ साथ आपको दे मोबाइल ऐप से कंप्लीट कंट्रोल. नो फ्रॉस्ट, नो वरीज.
0: This program is brought to you by
3: Hire Kan Naya No Frost IoT Refrigerator, Twin Inverter Technology, jisse mile maximum cooling aur energy saving. No frost, no worries.
0: And
4: Phoenix laga aur bhul ja, Phoenix laga aur bhul ja.
0: And
5: sweep be clean, kare tezi se sakht daag aur jarasim ka khatma, aur rakhe toilet ko chamakta hua saaf.
1: And HBL Freedom Account, jahan khwab wahan HBL.

जी आप हैं हमारे साथ गुड मॉर्निंग पाकिस्तान में और मैं हूं आपकी दोस्त आपकी होस्ट अजय सुमीहा। हम बात कर रहे हैं आज के आपको किन मौकों पर साइलेंट नहीं रहना चाहिए और जरूरी है कि आप अपनी इजहार करें। और हमारे यहाँ तो खासकर कराची के अंदर या चुपचाप हो निकल लो सीधा घर पहुंचो ऑफिस जाओ किसी झगड़े वगड़े में नहीं पड़ो और इस चीज का फायदा हमारी गवर्नमेंट या बहुत ज्यादा जो जालिम लोग हैं वो उसका हर जगह फायदा उठाते हैं। और जैसे कि अभी आप देखें कि कहीं पर भी आपको पहले का मैं पुराने टाइम में देखे थे उसमें कॉन्सेप्ट होता ट्रेड यूनियन या मजदूर यूनियन जिंदाबाद। अब मजदूर यूनियन भी नहीं है कहीं पर भी आपको वो यूनियन कोई बनने ही नहीं देते ताकि ऐसा ना हो कि सारे गरीब लोग मिलकर अमीरों के खिलाफ महाज खड़ा कर दें। हालांकि गरीबों की तादाद अमीरों से ज्यादा होती है और मगर गरीब एक नहीं होते अमीर अपने मामला अमीर बड़े चलाक हैं। आपने देखें जो अमीर लोग इतने स्ट्रांग इसलिए भी होते हैं कि पॉलिटिशियंस भी जो है ना उनके दोस्त यार भी सारे ये होते हैं क्या कहते हैं बिजनेसमैन। इनकी मीटिंग कभी हमसे हाफ और हमसे थोड़ी मिलेंगे ये मिलते हैं जी इनकी मीटिंग जरूरी होती है बड़े बड़े बिजनेसमैन बड़े बड़े ताजर और वो उनको फिर तोहफे देते हैं कि भाई तुम हमारा काम कर दो हमारा प्लान हमारा टेंडर अप्रूव करा दो। ये आपस में इनकी गठजोड़ है गरीब बेचारा अकेला है। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ गरीब तादाद में बहुत ज्यादा है और गरीबों को तकलीफ उठाने से भी कोई मसला नहीं होता। आदत हो जाती है उन्होंने तो इतनी तकलीफें दे के हमें हुकूमत

0: It's 9:30 a.m. This time check is brought to you by HBL Freedom Account. Jahan khwab, wahan HBL.
1: Jab zindagi ek lafz se ruk si jaye, cancer. एक बीमारी नहीं, एक इम्तिहान है। हर दिन एक जंग से कम नहीं, एक ऐसी जंग जिसमें बहुत से लोग नाउम्मीद हो जाते हैं। मगर अब मायूसी उम्मीद में बदल रही है। डाउ कॉम्प्रिहेंसिव कैंसर सेंटर, हुकूमत सिंध का वो कदम जहां कैंसर का इलाज अब एक नए मायार पर मुमकिन है। गामा नाइफ एडवांस टेक्नोलॉजी के जरिए ब्रेन ट्यूमर का बगैर सर्जरी के इलाज किया जाता है, जो उमूमन एक ही दिन में मुमकिन होता है, और इसके जरिए एडवांस स्टेज ब्रेन ट्यूमर्स यानी तीसरे और चौथे स्टेज के साथ मल्टीपल मेटास्टेटिस का इलाज भी मुमकिन है। जदीद तरीन MR लिनक मशीन की बदौलत अब कैंसर जिस्म के किसी भी हिस्से में छुप नहीं सकता, दौरान इलाज इसे बराह रास्त देखा जा सकता है और रेडिएशन को उसके रिएक्शन के मुताबिक फौरन एडजस्ट किया जाता है। यहाँ पूरे पाकिस्तान से आए हुए लोगों का इलाज मुफ्त किया जाता है। अब कैंसर का फौरी इलाज ख्वाब नहीं हकीकत बन चुका है, जो हुकूमत सिंध और चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी के विजन से मुमकिन हुआ, क्योंकि ये सिर्फ इलाज नहीं उम्मीद है हर उस चेहरे की जो जीना चाहता है। खिदमत में सबसे आगे सिंध।
0: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ अपने ख्वाबों और बिजनेस को दे आजादी की उड़ान। मुफ्त IBFT, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ अकाउंट खोले डिजिटली या विजिट करें अपनी करीबी HBL ब्रांच। HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां ख्वाब वहां HBL।
2: हायर नो फ्रॉस्ट IoT रेफ्रिजरेटर, इसकी IoT टेक्नोलॉजी फूड एक्सपायरी नोटिफिकेशन के साथ साथ आपको दे मोबाइल ऐप से कंप्लीट कंट्रोल। नो फ्रॉस्ट, नो वरीज।
3: टैक्स पे करना अब हुआ आसान। अभी जैज कैश ऐप डाउनलोड करें और अपना टैक्स पे करके लकी ड्रॉ में शामिल हो जाएं और जीतें इलेक्ट्रिक स्कूटर। आसान पेमेंट्स और एक्साइटिंग रिवॉर्ड्स के लिए जैज कैश है ना।
2: हायर कर नया नो फ्रॉस्ट IoT रेफ्रिजरेटर, जिसका मल्टी एयर फ्लो सिस्टम दे बैलेंस्ड कूलिंग हर कंपार्टमेंट में और रखे आपके रेफ्रिजरेटर को क्लीन। ट्विन इन्वर्टर टेक्नोलॉजी जिससे मिले मैक्सिमम कूलिंग और एनर्जी सेविंग। नो फ्रॉस्ट, नो वरीज।
0: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ मुफ्त IBFT, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां ख्वाब वहां HBL।

वेलकम बैक, यू ट्यून इन टू FM 100 एंड द शो इज गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। और आज हम बात कर रहे हैं कि कौन से मौके पर आपको बिल्कुल भी खामोश नहीं रहना चाहिए। और वैसे खवातीन जो है वो मतलब उनके लिए खामोश रहना मुश्किल है, मतलब मर्दों के लिए कहीं कहीं बोलना मुश्किल है, तो खवातीन के लिए अपने आप को कंट्रोल करना पड़ता है, यार मैं बोलूं कि ना बोलूं। और हमारे पास आप लोगों के मैसेजेस भी आ गए, नान अहमद का मैसेज शामिल करेंगे। जब किसी पर जुल्म हो रहा हो, जब सच दबाया जा रहा हो, तब खामोशी रजामंदी बन जाती है, बोलना तब फर्ज हो जाता है। कुछ मौके ऐसे होते हैं जहां चुप रहना बुजदिली लगती है, जब कोई अकेला लड़ रहा हो, जब कोई गलत बयानी से दूसरे की इज्जत उछाली जा रही हो, जब फैसला पूरी कौम की जिंदगी बदल सकता हो, इन लम्हों में आवाज ही किरदार बनती है। जहां इंसाफ, सच और इंसानियत खतरे में हो, वहां खामोशी सबसे बड़ा शोर बन जाती है। बोलना पड़ता है चाहे आवाज कांपती हो, घर में, दोस्ती में, रिश्तों में, हर बात पर खामोश रहना रिश्ता नहीं बचाता। जहां गलतफहमी पड़ रही हो, जहां दिल दुख रहा हो, जहां इज्जत पर बात आ जाए, वहां चुप रहना फासले बढ़ा देता है, वहां बात करना जरूरी है। अपने हक के लिए खामोश रहना सही नहीं, जब आपके साथ ज्यादती हो, जब आपकी राय को दबाया जाए, उस वक्त जब चुप रह जाता है खुद से समझौता है। हर जगह खामोशी बेहतर नहीं होती, बाज़ औक़ात मजबूरी, बाज़ औक़ात बुज़दिली बन जाती है। जहां दिल गवाही दे रहा हो, वहां बोल देना ही बेहतर है। बिल्कुल सही बात है। और जब भी आप कोई रिश्ता बनाते हैं, तो रिश्ता करते वक्त, भले वो आपके ऑफिस का रिश्ता हो, भले आप किसी शादी ब्याह का रिश्ता हो रहा हो, पता होना चाहिए सामने वाली पार्टी को कि आपकी कोई गलत बात बर्दाश्त नहीं करेंगे। और अगर ये मसला है आपको कि आपको गुलाम चाहिए, भले वो रिश्ता हो शादी का या फिर ऑफिस में, तो आप मत मुझे रखें अपने साथ, क्योंकि मैं तो गुलामी नहीं कर सकता या कर सकती। ये बात बहुत जरूरी है। और लोगों को अच्छा मसला ये है कि लोगों को अपने राइट्स ही नहीं पता। एंड तो मतलब वहां मैं इंडिया के अंदर देखी थी, जाहिर है जो प्रोटेस्ट चली थी CJP की और उनके बॉलीवुड के एक्टर्स, अब उसमें भी ये हुआ था कि कुछ बॉलीवुड के एक्टर्स जो खामोश रहे, और उनको भी अब इसके रिपरकशंस जो है वो सहने पड़ेंगे। कुछ थे जो बिल्कुल वहां पे पहुंचे, फिजिकली अपनी प्रेजेंस उन्होंने दिखाई, दे शोड अप फॉर द स्टूडेंट्स, तो वो उन्होंने अपने दिलों में इज्जत बना ली स्टूडेंट्स की। लेकिन जो लोग उस मौके पे भी नहीं बोले, काफी सारे बड़े स्टार्स हैं बॉलीवुड के जिनको बोलना चाहिए था, जिस तरीके से बोलना चाहिए था वो नहीं बोले, आगे नहीं आए, और वो गवर्नमेंट से डरते रहे या वो गवर्नमेंट की गुड बुक्स में रहना चाहते थे, तो इस वजह से उनकी भी जो है ना कि क्रेडिबिलिटी और पसंदीदगी कम हो गई। मूवीज बनाना, मूवीज में हीरो बनना बहुत आसान काम है, लेकिन असली लाइफ के अंदर खड़े रहना, आना आगे बढ़कर, तो ये मुश्किल काम था। उसमें एक उनके पुराने साउथ इंडियन, बड़े अच्छे फेमस साउथ इंडियन एक्टर भी आए हुए थे, वो कॉन्स्टिट्यूशन की बुक लेके खड़े हुए थे। और मैं सोची थी हमें तो खुद नहीं पता, कॉन्स्टिट्यूशन में पढ़ाया ही नहीं जाता, और हमें खुद अपने राइट्स ही नहीं पता। वो आवाम अपने राइट्स के लिए क्या खड़ी होगी जिनको पूरे अपने एजुकेशन सिस्टम के अंदर कभी बताया ही नहीं गया कि एज अ सिटीजन ऑफ पाकिस्तान आपके राइट्स क्या हैं। क्योंकि राइट्स अगर पता चल जाएंगे आवाम को, तो ही तो वो खड़ी होगी। तो खैर, वो लोग आपको नहीं बताएंगे, नहीं एजुकेट करेंगे आपको, जो है खुद ही जो है ना अपने राइट्स पता होने चाहिए। एज सिटीजन सर्च करें, बताएंगे आपके राइट्स क्या है, तभी उनके लिए आप आवाज उठा सकें। इसके अलावा एजुकेशन मिनिस्टर ने वहां पे क्या कहते हैं, रिजाइन कर दिया। हमारी एजुकेशन का तो इससे कहीं ज्यादा बुरा हाल है, यकीन करें। इतने सारे गवर्नमेंट स्कूल्स अभी भी वहां पे, आप अगर इंटीरियर सिंध जाएं, वहां पर बुरा हाल है, बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर खाली पड़े, टीचर्स हमारे इंतहाई ना अहल हैं। अभी आज मुझे बता रहा था कोई के, नहीं आज नहीं, लास्ट वीक के, कराची के ऐसे गवर्नमेंट स्कूल्स हैं जहां पे टीचर्स को एप्लीकेशन तक लिखनी नहीं आती, मतलब वो एक दरख्वास्त तक नहीं लिख सकते बच्चों को क्या पढ़ाएंगे, और वो बच्चे मतलब फोर्स हुए हुए हैं कि वो प्राइवेट इदारों पर जाएं। सिंध गवर्नमेंट के अपने ही इदारे हैं ये, ज़ाबिस्ट और ज़ियाउद्दीन, ये कोई अवामी क्यों नहीं बना सकते, गवर्नमेंट वाला कोई चक्कर ये लोग क्यों नहीं शुरू सकते, कोई यूनिवर्सिटी ऐसी क्यों नहीं शुरू कर सकते इसकी फीसें कम हो। ये चाहते हैं गवर्नमेंट सिस्टम खराब रहे ताकि इनके जाके बच्चे जो है ना वो प्राइवेट सेक्टर में, जो उनके ही हैं, अपने ही हैं, उन्हीं पे जाएं। तो ये जान पूछ के प्राइवेट स्कूल्स की जो फीस है वो बिल्कुल एक आम इंसान तो नहीं बर्दाश्त कर सकता। गवर्नमेंट स्कूल्स जो है वो बिल्कुल 0/0 है। मेरी समझ में नहीं आता कि हमारे एजुकेशन मिनिस्टर को क्या लग रहा है कि मतलब वो कहेंगे, उनको भी डरना चाहिए, मगर तमाम पॉलिटिशियंस को सबक लेना चाहिए कि ऐसा नहीं है कि अब लोग सोते रहेंगे या अपनी ये अपनी बिल्कुल नाकिस कारकर्दगी दिखाते रहेंगे। अब इनको भी थोड़ा ना डरना चाहिए आवाम से, थोड़ी अपनी परफॉर्मेंस
بہتر بنانی, تھوڑی نہیں کافی زیادہ کہ آپ وہ ڈیزرو کرتے ہیں کرسی جس کرسی پہ آپ بیٹھے ہوئے ہیں. اگر آپ کام نہیں کریں گے, آپ لوگوں کے ساتھ زیادتی نہ کریں گے, تو یہی انجام آپ کا بھی ہو سکتا ہے. اب خیر سے وہ ایجوکیشن منسٹر تھے, لیکن کون یاد کرے گا ان کو؟ کوئی یاد کرے گا؟ بلکہ جب بھی کوئی ان کا نام لے گا لوگ ہنسیں گے کہ کس طریقے سے لوگوں نے لاٹھیاں کھا کے, احتجاج کر کے, تکلیفیں اٹھا کے اس بندے کو اس منسٹری سے ہٹا دیا. تو آپ لوگ بھی کوئی ایسا تھا, ہمارے منسٹرز بھی ایسے ہی منسٹرز ہی ہیں, کسی نے کوئی دل نہیں جیتا, کسی نے کوئی ایسا کام نہیں کیا کہ ان کے جانے کے بعد کوئی ان کو عزت سے یاد رکھے. اور پتہ نہیں یہ آئیڈیا مجھے آ رہا ہے, ان لوگوں کو یوں نہیں آتا اپنے دماغ کے اندر یار کہ جب میں چلا جاؤں گا اسے کون یاد کرے گا. خیر جانے دے, یہ اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہیں کہ جی ہمیں سیٹ مل گئی ہے تو بس اب ہم بس بہت ہی کوئی کمال انسان ہو گئے. خیر یہ بھی آزمائش ہے. آپ اور ابھی ہم جنون کی آواز میں سن رہی ہیں یہ گانا. ٹائم تو کم رہ گیا ہے لیکن آواز سننا ضروری ہے.

0: It's 9:45 a.m. This time check is brought to you by Phoenix Batteries. Phoenix laga aur bhul ja. Phoenix laga aur bhul ja. HBL Freedom Account के साथ अपने ख्वाबों और बिजनेस को दे आजादी की उड़ान मुफ्त IBFT मुफ्त चेकबुक मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ अकाउंट खोले डिजिटली या विजिट करें अपनी करीबी HBL ब्रांच HBL फ्रीडम अकाउंट जहां ख्वाब वहां HBL
1: हायर का नया नो फ्रॉस्ट IoT रेफ्रिजरेटर जिसका मल्टी एयर फ्लो सिस्टम दे बैलेंस्ड कूलिंग हर कंपार्टमेंट में और रखे आपके रेफ्रिजरेटर को क्लीन ट्विन इन्वर्टर टेक्नोलॉजी जिससे मिले मैक्सिमम कूलिंग और एनर्जी सेविंग नो फ्रॉस्ट नो वरीज
0: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ मुफ्त IBFT मुफ्त चेकबुक मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट जहां ख्वाब वहां HBL

0: जब जिंदगी एक लफ्ज से रुक सी जाए, कैंसर सिर्फ एक बीमारी नहीं, एक इम्तिहान है। हर दिन एक जंग से कम नहीं, एक ऐसी जंग जिसमें बहुत से लोग नाउम्मीद हो जाते हैं। मगर अब मायूसी उम्मीद में बदल रही है। डाउ कॉम्प्रिहेंसिव कैंसर सेंटर, हुकूमत सिंध का वो कदम जहां कैंसर का इलाज अब एक नए मयार पर मुमकिन है। गामा नाइफ एडवांस टेक्नोलॉजी के जरिए ब्रेन ट्यूमर का बगैर सर्जरी के इलाज किया जाता है, जो उमूमन एक ही दिन में मुमकिन होता है, और इसके जरिए एडवांस स्टेज ब्रेन ट्यूमर्स यानी तीसरे और चौथे स्टेज के साथ मल्टीपल मेटास्टेटिस का इलाज भी मुमकिन है। जदीद तरीन MR लिनक मशीन की बदौलत अब कैंसर जिस्म के किसी भी हिस्से में छुप नहीं सकता, दौरान इलाज इसे बराह रास्त देखा जा सकता है और रेडिएशन को उसके रिएक्शन के मुताबिक फौरन एडजस्ट किया जाता है। यहाँ पूरे पाकिस्तान से आए हुए लोगों का इलाज मुफ्त किया जाता है। अब कैंसर का फौरी इलाज ख्वाब नहीं, हकीकत बन चुका है, जो हुकूमत सिंध और चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी के विजन से मुमकिन हुआ, क्योंकि ये सिर्फ इलाज नहीं, उम्मीद है हर उस चेहरे की जो जीना चाहता है। खिदमत में सबसे आगे सिंध।
1: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ अपने ख्वाबों और बिजनेस को दे आजादी की उड़ान। मुफ्त IBFT, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ अकाउंट खोले डिजिटली या विजिट करें अपनी करीबी HBL ब्रांच। HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां ख्वाब वहां HBL।
2: हायर का नया नो फ्रॉस्ट IoT रेफ्रिजरेटर, जिसका मल्टी एयर फ्लो सिस्टम दे बैलेंस्ड कूलिंग हर कंपार्टमेंट में और रखे आपके रेफ्रिजरेटर को क्लीन। टू इन्वर्टर टेक्नोलॉजी जिससे मिले मैक्सिमम कूलिंग और एनर्जी सेविंग। नो फ्रॉस्ट, नो वरीज।
3: खालिस अज्जा, भरोसे मंद शिफा, श्वाबे सिंगल रेमेडीज कुदरत के बेहतरीन अज्जा से तैयार की गई हैं, क्योंकि आपकी सेहत इससे कम की हकदार नहीं। डॉक्टर हमीद जनरल होमियो और श्वाबे सिंगल रेमेडीज, 75 सालों से पाकिस्तान में नस्लों का भरोसा।
1: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ मुफ्त IBFT, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां ख्वाब वहां HBL।
2: हायर नो फ्रॉस्ट IoT रेफ्रिजरेटर, इसकी IoT टेक्नोलॉजी फूड एक्सपायरी नोटिफिकेशन के साथ साथ आपको दे मोबाइल ऐप से कंप्लीट कंट्रोल। नो फ्रॉस्ट, नो वरीज।
4: टैक्स पे करना अब हुआ आसान। अभी जैज कैश ऐप डाउनलोड करें और अपना टैक्स पे करके लकी ड्रॉ में शामिल हो जाएं और जीतें इलेक्ट्रिक स्कूटर। आसान पेमेंट्स और एक्साइटिंग रिवॉर्ड्स के लिए जैज कैश है ना।
1: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ मुफ्त IBFT, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां ख्वाब वहां HBL।
5: FM 24/7 365।
6: بین الاقوامی سفر پر روانہ ہونے والے متوجہ ہوں، ایسی آن لائن ایپس اور پلیٹ فارم سے اجتناب کریں جو پیسوں کی عوض کسی نامعلوم شخص کا سامان آپ کے اپنے سامان کے ساتھ لے جانے کے لیے کرتے ہیں۔ یہ آسان کمائی کا طریقہ تو نظر آتا ہے، لیکن حقیقت میں خطرناک جال ہے۔ منشیات فروش انہی طریقوں کو استعمال کر کے منشیات سمگل کر رہے ہیں۔ یاد رکھیں، اگر آپ کے سامان سے منشیات برآمد ہوئی تو قانوناً اس جرم کی ذمہ دار صرف آپ ہوں گے۔ خبردار، کسی اجنبی کا سامان دوران سفر اپنے ساتھ لے جانا آپ کے لیے خطرناک ہو سکتا ہے۔
7: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا۔
8: FM 100 31 سال FM 100 آپ کی آواز۔ السلام علیکم پاکستان،
9: السلام علیکم پاکستان۔

0: It's 10:15 a.m. This time check is brought to you by Dr. Hamid General Homeo and Schwabe Germany, proudly serving Pakistan with the best of homeopathy for 75 remarkable years.
1: HBL Freedom Account ke saath muft IBFT, muft checkbook, muft online banking aur behtareen mobile app ki sahulat ke saath. HBL Freedom Account, jahan khwab wahan HBL.
2: जब बात आपकी सेहत की हो तो खालिस्तान बहुत अहमियत रखता है। शोबे मयार की सख्त जांच पड़ताल करता है ताकि इस बात को यकीनी बनाया जा सके कि हर दवा असली और काबिल भरोसा हो। डॉक्टर हमीद जर्नल होमियो और शोबे जर्मनी पिछले 75 सालों से सेहतमंद पाकिस्तान के लिए कोशां।
1: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ मुफ्त IBFT, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां खास वहां HBL।
3: हायर नो क्रॉस IoT रेफ्रिजरेटर, इसकी IoT टेक्नोलॉजी फूड एक्सपायरी नोटिफिकेशन के साथ साथ आपको दे मोबाइल ऐप से कंप्लीट कंट्रोल। नो फ्रॉस्ट, नो वरीज।
4: FM 100, like us on facebook.com/FM247365 FM247365
5: कभी सोचा है कि अब जंग की सूरत क्या है? अब जंग मैदाने जंग में नहीं, हमारे जहनों में लड़ी जा रही है। अब दुश्मन की गोलियां बारूद नहीं, मालूमात हैं, और निशाना हम सब। रियासत मुखालिफ ताकतें हमारे घरों के दरवाजे तक पहुंच चुकी हैं। टेक्नोलॉजी और इंटरनेट के पर्दे में दुश्मन छुपा बैठा है। वो ढूंढता है कमजोर लम्हे, बेरोजगार नौजवान, जरूरतमंद खानदान, फिर उनके सामने बिछाता है ख्वाब, बड़ी नौकरी, तेज दौलत, बैरून मुल्क सफर, और फिर कभी रिपोर्टर की सूरत में, कभी एनजीओ वर्कर या फ्रीलांसर बनकर उनसे वो राज निकलवाता है जो दुश्मन का रास्ता खो देते हैं, जिनसे बदमनी, खौफ और फसाद हमारी गली कूचों तक उतर आते हैं, हमें अपनी ही मट्टी के खिलाफ खड़ा कर देता है। जो आपसे मालूमात लेता है वो आपकी जात तक पहुंचता है, आपकी तस्वीरें, पहचान, फोन, सब कुछ खतरे में डाल देता है। तो याद रखिए, किसी अजनबी को अपनी कोई हसास बात ना दीजिए। कोई मशकूक चीज, कॉल या पेशकश हो, फौरन रिपोर्ट कीजिए। हसास मकामात बस अपने इदारे तक रखिए, क्योंकि हर लफ्ज, हर क्लिक, हर तस्वीर या तो हिफाजत है या खतरा। फैसला आपके हाथ में है।
0: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया।

0: 5 a.m. This time check is brought to you by Phoenix Batteries. Phoenix laga aur bhul ja. Phoenix laga aur bhul ja. HBL Freedom Account ke saath apne khwabon aur business ko de azadi ki udaan. Muft IBFT, muft checkbook, muft online banking aur behtareen mobile app ki sahulat ke saath account khole digitally ya visit kare apni kareebi HBL branch. HBL Freedom Account. Jahan khwab, wahan HBL.
1: Hire ka naya no frost IoT refrigerator jiska multi airflow system de balanced cooling har compartment mein aur rakhe aapke refrigerator ko clean. Twin inverter technology jisse mile maximum cooling aur energy saving. No frost, no worries.
0: HBL Freedom Account ke saath muft IBFT, muft checkbook, muft online banking aur behtareen mobile app ki sahulat ke saath HBL Freedom Account. Jahan khwab, wahan HBL.
2: तेजी से फैलती डिजिटल दुनिया एक जबरदस्त सलाहियत के साथ साथ एक अहम जिम्मेदारी भी. मजहबी, फिरका वाराना या नस्ली बुनियाद पर नफरत अंगेजी, दहशतगर्दी की तरगीब से मुतल्लिक किसी भी तरह का मवाद फैलाना, इलेक्ट्रॉनिक जालसाजी, स्पैमिंग, धोखादही, बशमूल आइडेंटिटी थेफ्ट, चाइल्ड पोर्नोग्राफी और साइबर स्टॉकिंग और अनचाही मुदाखलत, मसलन किसी भी फर्द से जबरदस्ती या बार बार राबिता करना, मुतल्लिका शख्स की रजामंदी के बगैर उसकी तस्वीर या वीडियोस बनाना और शेयर करना वगैरह संगीन जराइम है. इस तरह की खिलाफ वर्जियाँ पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट और दीगर कानून के तहत कानूनी नतायज की मुतहम्मिल हैं. अगर आप इस बारे में कोई सवाल करना, इस सिलसिले में मदद तलब करना, किसी वाकये की इत्तला देना या इन कवानीन की खिलाफ वर्जी के मुर्तकिब अफराद के बारे में हुकूमत की मुआवनत करना चाहते हैं, तो बराह करम हमारी हेल्पलाइन पर कॉल करें.
3: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया.
4: डेंगू एक खतरनाक बीमारी है जो मच्छर के काटने से फैलती है. सुबह सूरज निकलने के बाद और शाम सूरज गुरूब होने से पहले ये मच्छर आपको काट सकता है. अगर आपको अचानक तेज बुखार, शदीद सर दर्द, जिस्म और जोड़ों में दर्द, मतली या कमजोरी महसूस हो तो फौरन डॉक्टर से रुजू करें. डेंगू का मच्छर साफ पानी में पैदा होता है, इसलिए घर और इर्द गिर्द कहीं भी पानी जमा न होने दें. पानी की टैंकियों को ढांप कर रखें. गमलों और कूलर का पानी बाकायदगी से तब्दील करें. लंबी आस्तीन वाले कपड़े पहनें. मच्छर मार स्प्रे और मच्छरदानी का इस्तेमाल करें. याद रखें, एहतियात ही डेंगू से बचाव का बेहतरीन तरीका है. डेंगू से बचाओ, आपकी एहतियात, आपकी हिफाजत.
3: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया.
5: क्या आप जानते हैं कि टेलीकॉम ऑपरेटर्स की जानिब से मुख्तलिफ वैल्यू एडेड सर्विसेज फराहम की जाती हैं? इन सर्विसेज में रिंगटोन्स, ब्रेकिंग न्यूज अलर्ट्स, मिस्ड कॉल अलर्ट, इंटरनेट बंडल्स, गेम्स और दीगर मालूमाती सहूलियात शामिल हो सकती हैं. ताहम बाज़ औकात ये मुशाहिदा सामने आया है कि सारिफ की इजाजत के बगैर कोई वैल्यू एडेड सर्विस फाल हो जाती है या बैलेंस से रकम कट जाती है, जबकि सारिफ को इसका इल्म भी नहीं होता. याद रखें कि वैल्यू एडेड सर्विस की फालियत के लिए सारिफ की तस्दीक जरूरी होती है, जिसके लिए अमूमन ओटीपी की तस्दीक या मखसूस यूएसएसडी को डायल करना लाजिम होता है. याद रखें, पीटीए टेलीकॉम ऑपरेटर्स को वैल्यू एडेड सर्विस खुदकार तौर पर एक्टिवेट करने की इजाजत नहीं देता. अगर आपने ना तो ओटीपी शेयर किया है और ना ही कोई कोड डायल किया है तो ऐसी सर्विस फाल नहीं होनी चाहिए. अगर आपके साथ भी ऐसी सूरत हाल पेश आए तो परेशान होने की जरूरत नहीं. सबसे पहले अपने मुतल्लिका टेलीकॉम ऑपरेटर से राब्ता करें और बाकायदा शिकायत दर्ज करवाएं. ऑपरेटर आपको एक शिकायत नंबर फराहम करेगा. अगर मुकर्रा वक्त के अंदर आपका मसला हल ना हो तो आप पाकिस्तान टेली कम्युनिकेशन अथॉरिटी के ऑनलाइन पोर्टल पर भी शिकायत दर्ज कर सकते हैं. शिकायत के अंदराज का तरीकाकार ये है कि सबसे पहले वेबसाइट complaint.pta.gov.pk पर जाएं. शिकायत के अंदराज के लिए सारिफ को अपने नाम और शनाख्ती कार्ड पर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर के जरिए एक यूजर प्रोफाइल बनाना होगा. इसके बाद साइन अप के ऑप्शन पर क्लिक करें और मतलूबा मालूमात फराहम करें, जिनमें नाम, शनाख्ती कार्ड नंबर, राबता नंबर, शहर का नाम और पासवर्ड शामिल होंगे. इसके बाद जनरेट ओटीपी पर क्लिक करें और मौसूल होने वाला वन टाइम पासवर्ड दर्ज करें. اکاؤنٹ بننے کے بعد سائن ان کریں اور اپنا سی این آئی سی اور پاسورڈ درج کر کے لاگ ان ہو جائیں۔ یاد رکھیں کہ آپ کا قومی شناختی کارڈ نمبر ہی آپ کا یوزر نیم ہوگا۔ لاگ ان ہونے کے بعد بائیں جانب موجود رجسٹر نیو کمپلینٹ کے آپشن پر کلک کریں۔ اب شکایت کی تفصیلات درج کریں اور شکایت کی نوعیت منتخب کریں۔ اس کے بعد شہر، سروس، فراہم کنندہ کی قسم اور دیگر مطلوبہ معلومات فراہم کریں۔ اگر آپ کی شکایت کسی موبائل نیٹورک آپریٹر سے متعلق ہے تو اس بات کو یقینی بنائیں کہ آپ کے پاس وہ شکایت نمبر موجود ہو جو آپ کو آپریٹر کے پاس شکایت درج کراتے وقت فراہم کیا گیا تھا، کیونکہ پی ٹی اے کے پاس شکایت کے اندراج کے لیے یہ نمبر دینا ضروری ہوتا ہے۔ اب کمپلینٹ نمبر درج کریں اور کمپلینٹ سمری میں اپنی شکایت کی تفصیل لکھیں۔ ضرورت کے تحت متعلقہ فائل بھی منسلک کی جا سکتی ہے۔ اس کے بعد قواعد و ضوابط قبول کرتے ہوئے اپنی شکایت باقاعدہ طور پر سبمٹ کر دیں۔ شکایت سبمٹ ہونے کے بعد آپ کو ایک ریفرنس نمبر موصول ہوگا جس کے ذریعے آپ اپنی شکایت کا سٹیٹس بھی معلوم کر سکتے ہیں۔ مزید معلومات کے لیے پی ٹی اے کے ٹول فری نمبر 0800-55055 پر رابطہ کریں۔ ڈیجیٹل دنیا میں محفوظ قدم، پی ٹی اے۔
6: یہ مفاد عامہ کا پیغام آپ تک پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی کی جانب سے پیش کیا گیا ہے۔
7: facebook.com/fm247365

0: 11:15 a.m. This time check is brought to you by Dr. Hamid General Homeo and Schwabe Germany, proudly serving Pakistan with the best of homeopathy for 75 remarkable years.
1: आम चीजों पर समझौता क्यों करें? शोबे सिंगल रेमेडीज मुस्तनद जर्मन महारत के साथ तैयार करदा कुदरत के बेहतरीन अज्जा लाए हैं ताकि आपकी सेहत की बेहतरीन देखभाल हो सके. डॉक्टर हमीद जर्नल होम्यो और शोबे सिंगल रेमेडीज, भरोसे, देखभाल और जर्मन महारत के 75 साल.
2: कहीं अनजाने में आप दहशतगर्दों की माली मुआवनत तो नहीं कर रहे? होशियार रहें, मुहतात रहें. अपना बैंक अकाउंट किसी दूसरे फर्द को हरगिज इस्तेमाल न करने दें और न ही किसी अनजान अकाउंट में रकम मुंतकिल करें. हुंडी, हवाला या बैंक अकाउंट के जरिए दहशतगर्दों की माली मुआवनत करने वाले अफराद के खिलाफ इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट के तहत सख्त कानूनी कार्रवाई का आगाज हो चुका है. याद रखें, दहशतगर्दों की माली मुआवनत भी दहशतगर्दी है. हुकूमत पाकिस्तान.
0: मुफाद आम्मा के लिए पैगाम हुकूमत पाकिस्तान और FM 100 कराची की जानिब से पेश किया गया.
3: FM 100 like us on facebook.com/FM247365.

0: FM 100's time check. It's 12 noon.
1: टैक्स पे करना अब हुआ आसान। अभी जैज कैश ऐप डाउनलोड करें और अपना टैक्स पे करके लकी ड्रॉ में शामिल हो जाएं और जीतें इलेक्ट्रिक स्कूटर। आसान पेमेंट्स और एक्साइटिंग रिवॉर्ड्स के लिए जैज कैश है ना।
2: नाजरीन, ताजा तरीन खबर से आपको आगाह करेंगे कि पूरे शहर में फैल चुकी है आपके टॉयलेट की बदबू।
3: बंद करो ना ढक्कन।
4: स्वीपी क्लीन करे तेजी से सख्त दाग और जरासीम का खात्मा और रखे टॉयलेट को चमकता हुआ साफ।
0: FM 100 like us on facebook.com/FM247365 FM 247365 FM 100 31 साल FM 100 आपकी आवाज। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान।
5: अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। पाकिस्तान।

0: Assalam o Alaikum, Pakistan, and Assalam o Alaikum, everyone. This is me, Fatma Khan, aur aap sun rahe hain FM 100 Pakistan. How are you all? Kya haal hai aap sabke? Kaisa guzar raha hai din? Kya kar liya hai? Kya karne wale hain? तो जी होंगी आपसे खूब सारी बातें शेयर करेंगे कुछ इन्फॉर्मेशन और साथ ही साथ प्रोग्राम में होगा बहुत सारा म्यूजिक और सिर्फ बहुत सारा म्यूजिक नहीं बल्कि बहुत सारी बातें भी होंगी प्रोग्राम लंच टाइम स्पेशल में. लेकिन भाई सबसे पहले जरूरी यह है कि हम प्रोग्राम का बाकायदगी से आगाज कर लें क्योंकि बाकायदगी से आगाज ना हमारी बातों से नहीं होता होता है एक अदद म्यूजिकल ट्रैक के साथ. तो चलें जी लेट्स बिगिन.
1: See that you're my man.

यस एवरीबॉडी, तो हो चुका है प्रोग्राम लंच टाइम स्पेशल का बाकायदगी से आगाज। और अब हम आपको सबसे पहले बताएंगे तरीका कार कि कैसे आप भी बन सकते हैं हमारे प्रोग्राम का हिस्सा। तो उसके लिए आपने अपने मोबाइल के राइट मैसेज ऑप्शन में जाना है, की चाय लिखना है, स्पेस देना है, अपना मैसेज टाइप कर सेंड कर देना है 3636 पे। तो इस तरीके कार को फॉलो करें और जल्दी से हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बने, अपनी अपनी हाजिरी लगाएं और हमें बताएं कि जी इस वक्त आप लोग हमें कहां से सुन रहे हैं, इस वक्त आप लोग सफर कर रहे हैं, इस वक्त आप लोग आराम कर रहे हैं, इस वक्त आप लोग कोई काम कर रहे हैं, तो क्या मसरूफियात है आपकी, ये भी हमें जरूर बताएं। और आज है मंडे का दिन। मंडे का दिन मतलब छुट्टी के दिन का जिक्र है कंपलसरी। तो छुट्टी का दिन आप सबका कैसा गुजरा, क्या रही आप सबकी मसरूफियात, कहीं आना जाना हुआ, घर में आराम किया, बहुत काम थे वो किए, या फिर गर्मी बहुत लगी और जिसकी वजह से कोई काम ना किया। अच्छा, वैसे हम कराची वालों के पास ना एक ना काम करने का जो एक अहम बहाना होता है ना, वो ये होता है कि गर्मी बहुत है और करने की हिम्मत नहीं हो रही। तो अक्सर औकात हम अपने बहुत सारे काम ना इस वजह से नहीं करते कि गर्मी बहुत है और कुछ करने की हिम्मत नहीं हो रही। तो क्या यही सूरत हाल कल कहीं आपके साथ भी तो नहीं हुई, या अगर आपने सोचा कि नहीं भाई छुट्टी का एक ही दिन है, जितने भी काम करने हैं जल्दी से कर लेते हैं, तो कैसे गुजरा आप सबको छुट्टी का दिन हमें जरूर बताएं। हम चलते हैं एक ट्रैक की जानेब और आते हैं वापस ट्रैक के बाद। जब तक आप हमें जल्दी से मैसेज करके बताएं कि आप सबने अपना छुट्टी का दिन कैसा गुजारा।

टैक्स पे करना अब हुआ आसान। अभी जैज कैश ऐप डाउनलोड करें और अपना टैक्स पे करके लकी ड्रॉ में शामिल हो जाएं और जीतें इलेक्ट्रिक स्कूटर। आसान पेमेंट्स और एक्साइटिंग रिवॉर्ड्स के लिए जैज कैश है ना।

0: ऑल राइट एवरीबॉडी, तो हम आ चुके हैं वापस। बहुत सारी बातें कर ली लेकिन बहुत सारी बातें अभी बाकी हैं। आई एम श्योर कि अभी जो मौसम की ताजा तरीन सूरत हाल से मैंने आप लोगों तक आगाही फराहम की है वो सुनने के बाद जो है वो आप लोग काफी एक्साइटेड हो गए होंगे, बिकॉज अभी अगस्त का महीना जो है वो बस आने ही वाला है। लगभग 4 दिन रह गए हैं अब हमें नए महीने में दाखिल होने में, और ये नया महीना शहर कराची के लिए कुछ अच्छी खबरें ला रहा है। अब बारिश होगी भाई कराची में, जिसका कराची वालों को बेसब्री से इंतजार है। सो यस, कराची में बारिश होने वाली है, लेकिन अभी नहीं, अभी 4 दिन मौजूद हैं। और इसी के साथ साथ जुमरात और जुम्मे को गर्मी भी जरा जबरदस्त किस्म की पड़ेगी, तो उसके लिए भी आपको तैयार होना जरूरी है, क्योंकि मजीद ट्विस्ट एंड टर्न्स भी बाकी हैं। तो ऐसे नहीं होगा कि भाई कराची वालों बस बारिश की फरमाइश करें और फौरन से मिल जाए, नहीं, उससे पहले थोड़ा सा सफर भी हमें करना होगा और फिर जाकर हम लोग इस बारिश को करेंगे एक्सपीरियंस। एंड येस, आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर दिस बारिश, बिकॉज बिल आखिर अब कराची में जो है वो बारिश होने जा रही है। अच्छा भाई, कुछ ही देर में हम लंच का जिक्र भी करने वाले हैं कि आपके लंच में क्या है, लेकिन इसी के साथ साथ आज 27 जुलाई को एक दिन मनाया जाता है जिसका नाम है नेशनल चिकन फिंगर डे। ओके, और चिकन से बनी चीजें तो मेरे ख्याल से आजकल जेन जीज की तो मेरे ख्याल से बहुत ही ज्यादा फेवरेट हैं। अब वो फ्राइड चिकन हो, वो चिकन विंग्स हो, वो जैसे कि आज का दिन मनाया जा रहा है चिकन फिंगर डे हो, तो ये तो भाई हम सबकी बड़ी फेवरेट है। मैंने कहा क्योंकि लंच का जिक्र कुछ देर में होने ही वाला है, तो जरा खाने पीने की बातें कर जो है वो हमारे लिसनर्स के मूड को अच्छा किया जा सकता है, क्योंकि भाई वैसे भी अभी कुछ ही देर में जो सब लोग हैं वो अपने काम से थोड़ा सा ब्रेक लेंगे, थोड़ा सा रिलैक्स करेंगे। और छुट्टी का दिन कैसा गुजरा, ऑब्वियसली इस लंच ब्रेक में उसका भी जिक्र होगा और मजे मजे के खाने भी अपने कुलीग्स के साथ खाए जाएंगे। तो भाई आपके लंच में क्या है हमें जरूर बताएं, और इसे बताने के लिए आपने करना कुछ यूं है कि अपने मोबाइल के राइट मैसेज ऑप्शन में जाना है, KHI लिखना है, स्पेस देना है, अपना मैसेज टाइप कर सेंड कर देना है 3636 पे। तो भाई लंच में अब बिरयानी है, निहारी है, पुलाव है, कबाब है, या फिर कुछ और इंटरेस्टिंग है, या फिर आज प्लान ये किया गया है कि भाई आज जो है वो कुछ बाहर से मंगवाया जाएगा, तो जो भी आपका प्लान है वो आप हमसे जरूर शेयर करें, क्योंकि प्रोग्राम लंच टाइम स्पेशल में जिक्र लंच के बगैर ना प्रोग्राम जरा अधूरा है। तो अब आपकी जो भी प्लानिंग है वो बाहर से मंगवाने की है, वो घर में बनाने की है, तो आप हमसे जरूर शेयर करें। अंटिल एंड अनलेस हम करेंगे आपके मैसेज का इंतजार, तो आते हैं वापस कुछ ही देर में, तो आपने कहीं नहीं जाना है, वी विल बी राइट बैक।
1: Get ready to spice up your lunch hour with the hottest tunes and the coolest vibes.
2: FM 100's time check. It's 1 p.m.
3: Karachi, Lahore, Islamabad, Hyderabad, Rahim Yakam, Multan, Abbottabad, Gujarat, Jhelum. Across Pakistan, this is FM 100.
4: Assalamu alaikum, Pakistan.
5: Azan e Zuhr pesh ki ja rahi hai Sufi Soap special quality ke taawun se.
6: Bismillahir Rahmanir Rahim. FM 100 ke sab sunne walon ko assalamu alaikum. Karachi aur uske mazafat mein Azan e Zuhr ka waqt hua chahta hai.

0: 1:15 p.m. This time check is brought to you by Dr. Hamid General Homeo and Schwabe Germany, proudly serving Pakistan with the best of homeopathy for 75 remarkable years.
1: जब बात आपकी सेहत की हो तो खालिस्तान बहुत अहमियत रखता है। शोबे मयार की सख्त जांच पड़ताल करता है ताकि इस बात को यकीनी बनाया जा सके कि हर दवा असली और काबिल भरोसा हो। डॉक्टर हमीद जर्नल होमियो और शोबे जर्मनी पिछले 75 सालों से सेहतमंद पाकिस्तान के लिए गोशा।
0: This program is brought to you by
2: Higher Kanaya No Frost IoT Refrigerator Twin Inverter Technology जिससे मिले मैक्सिमम कूलिंग और एनर्जी सेविंग। No Frost No Worries
0: FM 100 Like us on facebook.com/FM247365 FM 247365

टैक्स पे करना अब हुआ आसान। अभी JazzCash ऐप डाउनलोड करें और अपना टैक्स पे करके लकी ड्रॉ में शामिल हो जाएं और जीतें इलेक्ट्रिक स्कूटर। आसान पेमेंट्स और एक्साइटिंग रिवॉर्ड्स के लिए JazzCash है ना।

0: शेयर बंडल्स, वो भी डिस्काउंट पर। सब्सक्राइब करना तो बनता है, तो बस अभी जैस कैश ऐप से जैस V5 फैंटास्टिक बंडल लगाओ और पाओ 2000 रुपए तक का बेहतरीन डिस्काउंट अपने फेवरेट बंडल्स पर। बड़े डिस्काउंट्स के लिए जैस कैश है ना।
1: बेहतरीन इंश्योरेंस हर वक्त आपके साथ, जैसे इजी पैसा इंश्योरेंस मार्केट प्लेस, 50 से ज्यादा प्लान्स, बेहतरीन कवरेज, फास्ट डिस्काउंट्स और सिर्फ 24 घंटों में क्लेम हासिल करने की सहूलत। कवर 3 के लिए डेडिकेटेड प्लान्स और 25,000 टॉप डॉक्टर्स से कंसल्टेशन भी। अभी इजी पैसा ऐप पर इंश्योरेंस मार्केट प्लेस एक्सप्लोर करें। इजी पैसा डिजिटल बैंक, इजी वाला बैंक।
2: This program is brought to you by
3: Hire ka naya No Frost IoT Refrigerator Twin Inverter Technology jisse mile maximum cooling aur energy saving No Frost No Worries
2: FM 100 Like us on facebook.com/FM247365 FM 247365

What a fusion. Love it. अच्छा जनाब, आज बात क्योंकि कलर्स की हो रही है, बहुत इंस्पायरिंग जो एक कलर होता है जो सबको एक स्पार्क देता है, एक किक देता है फीमेल्स को, वो ब्लैक एंड रेड. अच्छा मोस्टली इसके कॉम्बिनेशन भी बहुत ही खूबसूरत लगते हैं, बट ये डे कलर नहीं है. ये हर पर्सनालिटी को सूट करता है नॉर्मली मोस्ट ऑफ द टाइम, लेकिन इसमें कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिसमें अगर आप बहुत ज्यादा बावकार हैं, बहुत ही ग्रेसफुल खातून हैं, तो ये समझें कि चार चांद लगने वाली बात है. और एक ऐसी जगह पे आप अगर हैं जहां को आप लीड कर रही हैं, मींस दैट कि आप किसी ऐसी जगह को जैसे कि आपका इवेंट है उसको आप लेके चल रही हैं और आपने कोई ब्लैक या रेड कलर का ड्रेस लिया हुआ है, पहना हुआ है, तो आप उस चीज पे ये समझिए कि चार चांद लग गए. क्योंकि ब्लैक और रेड कलर एक ऐसे कलर होते हैं जो आपकी आपकी पर्सनालिटी को बड़ा ही कॉन्फिडेंस देते हैं, और अगर आप ऑलरेडी बहुत कॉन्फिडेंट हैं अपनी चीजों में तो आप ये समझें कि इस कलर ने तो आपको और मजीद डेफिनेशन दे दी है, और मजीद जो है लाखों लोगों की नजर आप पे जो है वो टिक सकती है, और यही एक औरत का मुझे लगता है. अच्छा मेल के लिए भी ये कलर बहुत ज्यादा चार्मिंग होता है, होल सोल रेड नहीं, बट इफ लाइक अगर आप ब्लैक के साथ टच करना चाहें थोड़ा सा रेड को तो आप कर सकते हैं, या रेड के साथ कोई अपना कॉम्बो लेना चाहें तो आप कर सकते हैं. और ब्लैक में ये है कि ब्लैक सूट्स मोस्टली जो मर्दों को सूट करता है, कि दोनों ही मेल फीमेल दोनों जेंडर्स पे ये कलर बहुत अच्छा जाता है, एक अच्छे कॉम्बिनेशन के साथ, एक अच्छा इवन सोलो कलर भी ये बहुत अच्छा जाता है. अगर आप एक सिर्फ और सिर्फ हेड टू टो ब्लैक वेयर किया हुआ आपने, तब भी ये कलर बहुत ही खूबसूरत लगता है, आपकी पर्सनैलिटी को बहुत इन्हांस करता है. और अगर आप एक एवरेज पर्सनालिटी के भी हैं तब भी ये कलर आप पे बुरा नहीं लग सकता.

0: It's 3:15 p.m. This time check is brought to you by Dr. Hamid General Homeo and Schwabe Germany, proudly serving Pakistan with the best of homeopathy for 75 remarkable years.
1: आम चीजों पर समझौता क्यों करें? शॉबे सिंगल रेमेडीज मुस्तना जर्मन महारत के साथ तैयार करदा कुदरत के बेहतरीन अज्जा लाए हैं ताकि आपकी सेहत की बेहतरीन देखभाल हो सके. डॉक्टर हमीद जर्नल होमियो और शॉबे सिंगल रेमेडीज, भरोसे, देखभाल और जर्मन महारत के 75 साल.
2: कहीं फिर से रहमो चाचा, अपना डांगा लेकर ना आ जाए. वो मुझे अपनी गोद में बिठाएंगे, मैं अम्मी को भी बताने से डरती हूँ.
3: आम तौर पर यही समझा जाता है कि बच्चों के साथ जिनसी बदसलूकी सिर्फ अजनबी करते हैं, मगर ऐसा नहीं है. दरअसल ये वो लोग होते हैं जिन पर माँ बाप आंख बंद करके भरोसा कर लेते हैं. बच्चों को समझाएं, चाहे अपना हो या पराया, इनकी मर्जी के खिलाफ कोई इन्हें छुए तो आपको फौरन बताएं. जिनसी बदसलूकी के बचाव के लिए बच्चों में अपनी हिफाजत करने की समझ बूझ पैदा करें. पाकिस्तान का आईन और कानून हर बच्चे को जिस्मानी और नफसियाती हक फराहम करता है. तहफ्फुज़ हर बच्चे का हक है, आए इसे यकीनी बनाएं. मजीद मालूमात और मशवरे के लिए हेल्प लाइन 1099 पे कॉल करें. वजारत इंसानी हुकूक, हुकूमत पाकिस्तान.
0: मुफाद आम्मा के लिए पैगाम हुकूमत पाकिस्तान और FM 100 कराची की जानिब से पेश किया गया.
4: FM 100 लाइक अस ऑन facebook.com/FM247365.

0: का ना लुक होता है। तो अगर आप ऐसा समझ रहे हैं कि भाई व्हाइट जो है वो हर फैब्रिक में आपको उसी तरह झलकता हुआ मिलेगा, तो नहीं, ऐसा नहीं होता। व्हाइट लॉन और कॉटन इट्स समथिंग जो आप बिल्कुल प्योरिफाई, जिसको आप देखते हैं कि हाँ भाई ये कलर जो है ये बिल्कुल उठता हुआ कलर है, प्योर कलर है।
1: बेहतरीन इंश्योरेंस हर वक्त आपके साथ, जैसे इजी परसेंट इंश्योरेंस मार्केट प्लेस, 50 से ज्यादा प्लान्स, बेहतरीन कवरेज प्लस डिस्काउंट्स, और सिर्फ 24 घंटों में क्लेम हासिल करने की सहूलत। कवर 3 के लिए डेडिकेटेड प्लान्स और 25,000 टॉप डॉक्टर से कंसल्टेशन भी। अभी इजी पैसा ऐप पर इंश्योरेंस मार्केट प्लेस एक्सप्लोर करें। इजी पैसा डिजिटल बैंक, इजी वाला बैंक।
2: facebook.com/fm247365 fm247365

0: Your location for maximum music. FM 100's time check. It's 5 p.m.
1: जब जिंदगी एक लफ्ज से रुक सी जाए, कैंसर, सिर्फ एक बीमारी नहीं, एक इम्तिहान है। हर दिन एक जंग से कम नहीं, एक ऐसी जंग जिसमें बहुत से लोग नाउम्मीद हो जाते हैं। मगर अब मायूसी उम्मीद में बदल रही है। डाउ कॉम्प्रिहेंसिव कैंसर सेंटर, हुकूमत सिंध का वो कदम जहां कैंसर का इलाज अब एक नए मायार पर मुमकिन है। गामा नाइफ एडवांस टेक्नोलॉजी के जरिए ब्रेन ट्यूमर का बगैर सर्जरी के इलाज किया जाता है, जो उमूमन एक ही दिन में मुमकिन होता है, और इसके जरिए एडवांस स्टेज ब्रेन ट्यूमर्स यानी तीसरे और चौथे स्टेज के साथ मल्टीपल मेटास्टेटिस का इलाज भी मुमकिन है। जदीद तरीन MR लिनक मशीन की बदौलत अब कैंसर जिस्म के किसी भी हिस्से में छुप नहीं सकता, दौराने इलाज इसे बराह रास्त देखा जा सकता है और रेडिएशन को उसके रिएक्शन के मुताबिक फौरन एडजस्ट किया जाता है। यहाँ पूरे पाकिस्तान से आए हुए लोगों का इलाज मुफ्त किया जाता है। अब कैंसर का फौरी इलाज ख्वाब नहीं हकीकत बन चुका है, जो हुकूमत सिंध और चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी के विजन से मुमकिन हुआ, क्योंकि ये सिर्फ इलाज नहीं उम्मीद है हर उस चेहरे की जो जीना चाहता है। खिदमत में सबसे आगे सिंध।
2: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ अपने ख्वाबों और बिजनेस को दे आजादी की उड़ान। मुफ्त IBFT, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ अकाउंट खोले डिजिटली या विजिट करें अपनी करीबी HBL ब्रांच। HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां ख्वाब वहां HBL।
3: जब बात आपकी सेहत की हो तो खालिस्तान बहुत अहमियत रखता है, शोबे मयार की सख्त जांच पड़ताल करता है ताकि इस बात को यकीनी बनाया जा सके कि हर दवा असली और काबिल भरोसा हो। डॉक्टर हमीद जर्नल होमियो और शोबे जर्मनी, पिछले 75 सालों से सेहतमंद पाकिस्तान के लिए कोशा।
2: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ मुफ्त IBFT, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां ख्वाब वहां HBL।
4: नाजरीन, ताज़ा तरीन खबर से आपको आगाह करेंगे कि पूरे शहर में फैल चुकी है आपके टॉयलेट की बदबू।
5: बंद करो ना ढक्कन।
6: स्वीपी क्लीन करे तेजी से सख्त दाग और जरासीम का खात्मा और रखे टॉयलेट को चमकता हुआ साफ।
2: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ मुफ्त IBFT, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां ख्वाब वहां HBL।
7: बेहतरीन इंश्योरेंस हर वक्त आपके साथ, जैसे इजी पैसा इंश्योरेंस मार्केट प्लेस, 50 से ज्यादा प्लान्स, बेहतरीन कवरेज, खास डिस्काउंट्स और सिर्फ 24 घंटों में क्लेम हासिल करने की सहूलत। कवर 3 के लिए डेडिकेटेड प्लान्स और 25,000 टॉप डॉक्टर्स से कंसल्टेशन भी। अभी इजी पैसा ऐप पर इंश्योरेंस मार्केट प्लेस एक्सप्लोर करें। इजी पैसा डिजिटल बैंक, इजी वाला बैंक।
2: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ अपने ख्वाबों और बिजनेस को दे आजादी की उड़ान। मुफ्त IBFT, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ अकाउंट खोले डिजिटली या विजिट करें अपनी करीबी HBL ब्रांच। HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां ख्वाब वहां HBL।
8: This program is brought to you by
9: Phoenix laga aur bhul ja, Phoenix laga aur bhul ja.
6: And Sweepy Clean kare tezi se sakht daag aur jarasim ka khatma aur rakhe toilet ko chamakta hua saaf.
2: And HBL Freedom Account, jahan khwab wahan HBL. And
10: Candy Land, not so fun karte jao.
11: कहीं अनजाने में आप दहशत गर्दों की माली मुआवनत तो नहीं कर रहे? होशियार रहें, मोहतात रहें। अपना बैंक अकाउंट किसी दूसरे फर्द को हरगिज इस्तेमाल न करने दें और न ही किसी अनजान अकाउंट में रकम मुंतकिल करें। हुंडी, हवाला या बैंक अकाउंट के जरिए دہشت گردوں کی مالی معاونت کرنے والے افراد کے خلاف انسداد دہشت گردی ایکٹ کے تحت سخت قانونی کاروائی کا آغاز ہو چکا ہے. یاد رکھیں، دہشت گردوں کی مالی معاونت بھی دہشت گردی ہے. حکومت پاکستان.
12: مفاد عامہ کے لیے پیغام حکومت پاکستان اور ایف ایم 100 کراچی کی جانب سے پیش کیا گیا.
13: 31 years of memory, milestone and moments. FM 100 Pakistan. It's a legacy.
14: Assalamu alaikum, Pakistan. Let's celebrate the journey.

0: FM 100's time check. It's 6 p.m.
1: जब जिंदगी एक लफ्ज से रुक सी जाए, कैंसर, सिर्फ एक बीमारी नहीं, एक इम्तिहान है। हर दिन एक जंग से कम नहीं, एक ऐसी जंग जिसमें बहुत से लोग नाउम्मीद हो जाते हैं। मगर अब मायूसी उम्मीद में बदल रही है। डाउ कॉम्प्रिहेंसिव कैंसर सेंटर, हुकूमत सिंध का वो कदम जहां कैंसर का इलाज अब एक नए मयार पर मुमकिन है। गामा नॉइस एडवांस टेक्नोलॉजी के जरिए ब्रेन ट्यूमर का बगैर सर्जरी के इलाज किया जाता है, जो उमूमन एक ही दिन में मुमकिन होता है, और इसके जरिए एडवांस स्टेज ब्रेन ट्यूमर्स यानी तीसरे और चौथे स्टेज के साथ मल्टीपल मेटास्टेटिस का इलाज भी मुमकिन है। जदीद तरीन MR लिनक मशीन की बदौलत अब कैंसर जिस्म के किसी भी हिस्से में छुप नहीं सकता, दौरान इलाज इसे बराह रास्त देखा जा सकता है और रेडिएशन को उसके रिएक्शन के मुताबिक फौरन एडजस्ट किया जाता है। यहाँ पूरे पाकिस्तान से आए हुए लोगों का इलाज मुफ्त किया जाता है। अब कैंसर का फौरी इलाज ख्वाब नहीं, हकीकत बन चुका है, जो हुकूमत सिंध और चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी के विजन से मुमकिन हुआ। क्योंकि ये सिर्फ इलाज नहीं, उम्मीद है हर उस चेहरे की जो जीना चाहता है। खिदमत में सबसे आगे सिंध।
2: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ अपने ख्वाबों और बिजनेस को दे आजादी की उड़ान। मुफ्त IBFT, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ अकाउंट खोले डिजिटली या विजिट करें अपनी करीबी HBL ब्रांच। HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां ख्वाब वहां HBL।
3: خالص اجزا بھروسے مند شفا شعب سنگل ریمیڈیز قدرت کے بہترین اجزا سے تیار کی گئی ہیں کیونکہ آپ کی صحت اس سے کم کی حقدار نہیں ڈاکٹر حمید جنرل ہومیو اور شعب سنگل ریمیڈیز 75 سالوں سے پاکستان میں نسلوں کا بھروسہ
4: ٹیکس پے کرنا اب ہوا آسان ابھی جیز کیش ایپ ڈاؤن لوڈ کریں اور اپنا ٹیکس پے کر کے لکی ڈرا میں شامل ہو جائیں اور جیتیں الیکٹرک سکوٹر آسان پیمنٹس اور ایکسائٹنگ ریوارڈز کے لیے جیز کیش ہے نا
5: फ्रॉस्ट IoT रेफ्रिजरेटर। इसकी IoT टेक्नोलॉजी फूड एक्सपायरी नोटिफिकेशन के साथ साथ आपको दे मोबाइल ऐप से कंप्लीट कंट्रोल। नो फ्रॉस्ट, नो वरीज।
2: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ मुफ्त IBFT, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां ख्वाब वहां HBL।
6: नाजरीन, ताज़ा तरीन खबर से आपको आगाह करेंगे कि पूरे शहर में फैल चुकी है आपके टॉयलेट की बदबू।
7: बंद करो ना ढक्कन।
8: स्वीप वी क्लीन करे तेजी से सख्त दाग और जरासीम का खात्मा और आपके टॉयलेट को चमकता हुआ साफ।
2: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ मुफ्त IBFT, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां ख्वाब वहां HBL।
5: हायर का नया नो फ्रॉस्ट IoT रेफ्रिजरेटर, जिसका मल्टी एयर फ्लो सिस्टम दे बैलेंस्ड कूलिंग हर कंपार्टमेंट में और रखे आपके रेफ्रिजरेटर को क्लीन। ट्विन इन्वर्टर टेक्नोलॉजी, जिससे मिले मैक्सिमम कूलिंग और एनर्जी सेविंग। नो फ्रॉस्ट, नो वरीज।
9: बेहतरीन इंश्योरेंस हर वक्त आपके साथ, जैसे इजी पैसा इंश्योरेंस मार्केट प्लेस, 50 से ज्यादा प्लान्स, बेहतरीन कवरेज, फास्ट डिस्काउंट्स और सिर्फ 24 घंटों में क्लेम हासिल करने की सहूलत। कवर 3 के लिए डेडिकेटेड प्लान्स और 25,000 टॉप डॉक्टर से कंसल्टेशन भी। अभी इजी पैसा ऐप पर इंश्योरेंस मार्केट प्लेस एक्सप्लोर करें। इजी पैसा डिजिटल बैंक, इजी वाला बैंक।
10: शेयर्ड बंडल्स, वो भी डिस्काउंट पर। सब्सक्राइब करना तो बनता है, तो बस अभी जैज कैश ऐप से जैज V5 फैंटास्टिक बंडल लगाओ और पाओ 2,000 रुपए तक का बेहतरीन डिस्काउंट अपने फेवरेट बंडल्स पर। बड़े डिस्काउंट्स के लिए जैज कैश है ना।

0: टैक्स पे करना अब हुआ आसान। अभी जैज कैश ऐप डाउनलोड करें और अपना टैक्स पे करके लकी ड्रॉ में शामिल हो जाएं और जीतें इलेक्ट्रिक स्कूटर। आसान पेमेंट्स और एक्साइटिंग रिवॉर्ड्स के लिए जैज कैश है ना।
1: This program is brought to you by
2: Phoenix laga aur bhul ja, Phoenix laga aur bhul ja.
1: And
3: Sweepy Clean kare tezi se sakht daag aur jarasim ka khatma aur rakhe toilet ko chamakta hua saaf.
1: And
4: HBL Freedom Account, jahan khwab wahan HBL.
1: And

0: FM 100's time check. It's 7 p.m. This program was brought to you by Phoenix Laga aur bhul ja, Phoenix Laga aur bhul ja. And
1: Sweepy Clean kare tezi se sak daag aur jarasim ka khatma aur rakhe toilet ko chamakta hua saaf.
0: And HBL Freedom Account, jahan khwab wahan HBL. And Cadillac, not so
2: fun karte jao. Jab zindagi ek lafz se ruk si jaye, कैंसर, सिर्फ एक बीमारी नहीं, एक इम्तिहान है। हर दिन एक जंग से कम नहीं, एक ऐसी जंग जिसमें बहुत से लोग नाउम्मीद हो जाते हैं। मगर अब मायूसी उम्मीद में बदल रही है। डाउ कॉम्प्रिहेंसिव कैंसर सेंटर, हुकूमत सिंध का वो कदम जहां कैंसर का इलाज अब एक नए मयार पर मुमकिन है। गामा नाइफ एडवांस टेक्नोलॉजी के जरिए ब्रेन ट्यूमर का बगैर सर्जरी के इलाज किया जाता है, जो उमूमन एक ही दिन में मुमकिन होता है, और इसके जरिए एडवांस स्टेज ब्रेन ट्यूमर्स यानी तीसरे और चौथे स्टेज के साथ मल्टीपल मेटास्टेटिस का इलाज भी मुमकिन है। जदीद तरीन MR लिनक मशीन की बदौलत अब कैंसर जिस्म के किसी भी हिस्से में छुप नहीं सकता। दौरान इलाज इसे बराह रास्त देखा जा सकता है और रेडिएशन को उसके रिएक्शन के मुताबिक फौरन एडजस्ट किया जाता है। यहाँ पूरे पाकिस्तान से आए हुए लोगों का इलाज मुफ्त किया जाता है। अब कैंसर का फौरी इलाज ख्वाब नहीं, हकीकत बन चुका है, जो हुकूमत सिंध और चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी के विजन से मुमकिन हुआ। क्योंकि ये सिर्फ इलाज नहीं, उम्मीद है हर उस चेहरे की जो जीना चाहता है। खिदमत में सबसे आगे सिंध।
0: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ अपने ख्वाबों और बिजनेस को दे आजादी की उड़ान। मुफ्त IBFT, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ अकाउंट खोले डिजिटली या विजिट करें अपनी करीबी HBL ब्रांच। HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां ख्वाब वहां HBL।
3: आम चीजों पर समझौता क्यों करें? शोबे सिंगल रेमेडीज मुस्तनद जर्मन महारत के साथ तैयार करदा कुदरत के बेहतरीन अज्जा लाए हैं, ताकि आपकी सेहत की बेहतरीन देखभाल हो सके। डॉक्टर हमीद जनरल होमियो और शोबे सिंगल रेमेडीज, भरोसे, देखभाल और जर्मन महारत के 75 साल।
0: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ मुफ्त IBFT, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां ख्वाब वहां HBL।
4: हायर का नया नो फ्रॉस्ट IoT रेफ्रिजरेटर, जिसका मल्टी एयर फ्लो सिस्टम दे बैलेंस्ड कूलिंग हर कंपार्टमेंट में और रखे आपके रेफ्रिजरेटर को क्लीन। ट्विन इन्वर्टर टेक्नोलॉजी, जिससे मिले मैक्सिमम कूलिंग और एनर्जी सेविंग। नो फ्रॉस्ट, नो वरीज।
0: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ मुफ्त IBFT, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां ख्वाब वहां HBL।
4: हायर नो फ्रॉस्ट IoT रेफ्रिजरेटर, इसकी IoT टेक्नोलॉजी फूड एक्सपायरी नोटिफिकेशन के साथ साथ आपको दे मोबाइल ऐप से कंप्लीट कंट्रोल। नो फ्रॉस्ट, नो वरीज।
5: बेहतरीन इंश्योरेंस हर वक्त आपके साथ, जैसे इजी पैसा इंश्योरेंस मार्केट प्लेस, 50 से ज्यादा प्लान, बेहतरीन कवरेज, खास डिस्काउंट और सिर्फ 24 घंटों में क्लेम हासिल करने की सहूलत। कवर 3 के लिए डेडिकेटेड प्लान और 25,000 टॉप डॉक्टर से कंसल्टेशन भी। अभी इजी पैसा ऐप पर इंश्योरेंस मार्केट प्लेस एक्सप्लोर करें। इजी पैसा डिजिटल बैंक, इजी वाला बैंक।
6: शेयर बंडल्स, वो भी डिस्काउंट पर। सब्सक्राइब करना तो बनता है, तो बस अभी जैस कैश ऐप से जैस V5 फैंटास्टिक बंडल लगाओ और पाओ 2,000 रुपए तक का बेहतरीन डिस्काउंट अपने फेवरेट बंडल्स पर। बड़े डिस्काउंट्स के लिए जैस कैश है ना।

0: your location for maximum music.
1: It's 7:30 p.m. This time check is brought to you by HBL Freedom Account. Jahan khwab, wahan HBL.
2: Jab zindagi ek lafz se ruk si jaye, cancer. सिर्फ एक बीमारी नहीं, एक इम्तिहान है. हर दिन एक जंग से कम नहीं, एक ऐसी जंग जिसमें बहुत से लोग नाउम्मीद हो जाते हैं. मगर अब मायूसी उम्मीद में बदल रही है. डाउ कॉम्प्रिहेंसिव कैंसर सेंटर, हुकूमत सिंध का वो कदम जहां कैंसर का इलाज अब एक नए मायार पर मुमकिन है. गामा नाइफ एडवांस टेक्नोलॉजी के जरिए ब्रेन ट्यूमर का बगैर सर्जरी के इलाज किया जाता है, जो उमूमन एक ही दिन में मुमकिन होता है. और इसके जरिए एडवांस स्टेज ब्रेन ट्यूमर्स यानी तीसरे और चौथे स्टेज के साथ मल्टीपल मेटास्टेटिस का इलाज भी मुमकिन है. जदीद तरीन MR लिनक मशीन की बदौलत अब कैंसर जिस्म के किसी भी हिस्से में छुप नहीं सकता. दौरान इलाज इसे बराह रास्त देखा जा सकता है और रेडिएशन को उसके रिएक्शन के मुताबिक फौरन एडजस्ट किया जाता है. यहाँ पूरे पाकिस्तान से आए हुए लोगों का इलाज मुफ्त किया जाता है. अब कैंसर का फौरी इलाज ख्वाब नहीं, हकीकत बन चुका है, जो हुकूमत सिंध और चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी के विजन से मुमकिन हुआ. क्योंकि ये सिर्फ इलाज नहीं, उम्मीद है हर उस चेहरे की जो जीना चाहता है. खिदमत में सबसे आगे सिंध.
1: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ अपने ख्वाबों और बिजनेस को दे आजादी की उड़ान. मुफ्त IBFT, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ अकाउंट खोले डिजिटली या विजिट करें अपनी करीबी HBL ब्रांच. HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां ख्वाब वहां HBL.
3: जब बात आपकी सेहत की हो तो खालिस्तान बहुत अहमियत रखता है. शोबे मयार की सख्त जांच पड़ताल करता है ताकि इस बात को यकीनी बनाया जा सके कि हर दवा असली और काबिल भरोसा हो. डॉक्टर हमीद जर्नल होमियो और शोबे जर्मनी, पिछले 75 सालों से सेहतमंद पाकिस्तान के लिए गोशा.
4: हायर का नया नो फ्रॉस्ट IoT रेफ्रिजरेटर, जिसका मल्टी एयर फ्लो सिस्टम दे बैलेंस्ड कूलिंग हर कंपार्टमेंट में और रखे आपके रेफ्रिजरेटर को क्लीन. ट्विन इन्वर्टर टेक्नोलॉजी, जिससे मिले मैक्सिमम कूलिंग और एनर्जी सेविंग. नो फ्रॉस्ट, नो वरीज.
1: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ मुफ्त IBFT, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां ख्वाब वहां HBL.
4: हायर नो फ्रॉस्ट IoT रेफ्रिजरेटर, इसकी IoT टेक्नोलॉजी फूड एक्सपायरी नोटिफिकेशन के साथ साथ आपको दे मोबाइल ऐप से कंप्लीट कंट्रोल. नो फ्रॉस्ट, नो वरीज.
5: बेहतरीन इंश्योरेंस हर वक्त आपके साथ, जैसे इजी पैसा इंश्योरेंस मार्केट प्लेस, 50 से ज्यादा प्लान.

0: It's 7:45 p.m. This time check is brought to you by Phoenix Batteries. Phoenix laga aur bhul ja. Phoenix laga aur bhul ja. HBL Freedom Account ke saath apne khwabon aur business ko de azadi ki udaan. Muft IBFT, muft checkbook, muft online banking aur behtareen mobile app ki sahulat ke saath account khole digitally. Ya visit kare apni kareebi HBL branch. HBL Freedom Account. Jahan khwab, wahan HBL.
1: हायर का नया नो फ्रॉस्ट आईओटी रेफ्रिजरेटर जिसका मल्टी एयर फ्लो सिस्टम दे बैलेंस्ड कूलिंग हर कंपार्टमेंट में और रखे आपके रेफ्रिजरेटर को क्लीन ट्विन इन्वर्टर टेक्नोलॉजी जिससे मिले मैक्सिमम कूलिंग और एनर्जी सेविंग नो फ्रॉस्ट नो वरीज
0: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ मुफ्त IBFT मुफ्त चेकबुक मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट जहां खास वहां HBL
1: हायर नो फ्रॉस्ट IoT रेफ्रिजरेटर इसकी IoT टेक्नोलॉजी फूड एक्सपायरी नोटिफिकेशन के साथ साथ आपको दे मोबाइल ऐप से कंप्लीट कंट्रोल नो फ्रॉस्ट नो वरीज
2: बेहतरीन इंश्योरेंस हर वक्त आपके साथ जैसे इजी पैसा इंश्योरेंस मार्केट प्लेस 50 से ज्यादा प्लान्स बेहतरीन कवरेज खास डिस्काउंट्स और सिर्फ 24 घंटों में क्लेम हासिल करने की सहूलत कवर 3 के लिए डेडिकेटेड प्लान्स और 25,000 टॉप डॉक्टर्स से कंसल्टेशन भी अभी इजी पैसा ऐप पर इंश्योरेंस मार्केट प्लेस एक्सप्लोर करें इजी पैसा डिजिटल बैंक इजी वाला बैंक
3: शेयर बंडल्स वो भी डिस्काउंट पर सब्सक्राइब करना तो बनता है तो बस अभी जैस कैश ऐप से जैस V5 फैंटास्टिक बंडल लगाओ और पाओ 2,000 रुपए तक का बेहतरीन डिस्काउंट अपने फेवरेट बंडल्स पर बड़े डिस्काउंट्स के लिए जैस कैश है ना

0: This program is brought to you by
1: Tufaan Hai.
2: तेजी से फैलती डिजिटल दुनिया एक जबरदस्त सलाहियत के साथ साथ एक अहम जिम्मेदारी भी। मजहबी, फिरका वाराना या नस्ली बुनियाद पर नफरत अंगेजी, दहशत गर्दी की तरगीब से मुतल्लिक किसी भी तरह का मवाद फैलाना, इलेक्ट्रॉनिक जालसाजी, स्पैमिंग, धोखादही, बशमूल आइडेंटिटी थेफ्ट, चाइल्ड पोर्नोग्राफी और साइबर स्टॉकिंग और अनचाही मुदाखलत, मसलन किसी भी फर्द से जबरदस्ती या बार बार राबिता करना, मुतल्लिका शख्स की रजामंदी के बगैर उसकी तस्वीर या वीडियोस बनाना और शेयर करना वगैरह संगीन जराइम है। इस तरह की खिलाफ वर्जियां पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट और दीगर कानून के तहत कानूनी नतायज की मुतहम्मिल हैं। अगर आप इस बारे में कोई सवाल करना, इस सिलसिले में मदद तलब करना, किसी वाकये की इत्तला देना या इन कवानीन की खिलाफ वर्जी के मुर्तकिब अफराद के बारे में हुकूमत की मुआवनत करना चाहते हैं, तो बराह करम हमारी हेल्पलाइन पर कॉल करें।
3: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया। बच्चों का ऑनलाइन तहफ्फुज़ आपकी जिम्मेदारी है। अपने बच्चों को ऑनलाइन राब्तों का महफूज तरीका इस्तेमाल सिखाएं। इंटरनेट के जरिए खेलों, तफरी और तालीमी सरगर्मियों में शामिल होने के फवायद जरूर हैं, लेकिन इसमें नामुनासिब मवाद, साइबर बुलिंग और दीगर ऑनलाइन नुकसानात जैसे मुमकिन खतरात भी मौजूद हैं। वालिदैन और असातिज़ा की जानिब से बच्चों की निगरानी और रहनुमाई न होने की सूरत में बच्चे बासानी मनफी सरगर्मियों का शिकार हो सकते हैं। वालिदैन को अपने बच्चों की ऑनलाइन सरगर्मियों के हवाले से आगाह और होशियार रहने की जरूरत है। बच्चों को नुकसानदेह मवाद जैसे नफरत अंगेज तकरीर, गुस्ताखाना और फहाश मवाद वगैरह अपलोड और शेयर करने के कानूनी नतायज के हवाले से भी शऊर और आगाही इंतहाई अहमियत की हामिल है। पीटीए की वेबसाइट पर पेरेंटल कंट्रोल सॉफ्टवेयर की एक फहरिस्त दस्तियाब है, ताकि वालदैन अपने बच्चों की ऑनलाइन सरगर्मियों की निगरानी करते हुए उन्हें ऑनलाइन नुकसान से महफूज रखें। www.pta.gov.pk। मुफादे आमा के लिए ये पैगाम FM 100 और हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया।
4: डेंगू एक खतरनाक बीमारी है जो मच्छर के काटने से फैलती है। सुबह सूरज निकलने के बाद और शाम सूरज गुरूब होने से पहले ये मच्छर आपको काट सकता है। अगर आपको अचानक तेज बुखार, शदीद सरदर्द, जिस्म और जोड़ों में दर्द, मतली या कमजोरी महसूस हो तो फौरन डॉक्टर से रुजू करें। डेंगू का मच्छर साफ पानी में पैदा होता है, इसलिए घर और इर्द गिर्द कहीं भी पानी जमा न होने दें। पानी की टैंकियों को ढांप कर रखें। गमलों और कूलर का पानी बाकायदगी से तब्दील करें। लंबी आस्तीन वाले कपड़े पहनें, मच्छर मार स्प्रे और मच्छरदानी का इस्तेमाल करें। याद रखें, एहतियात ही डेंगू से बचाव का बेहतरीन तरीका है। डेंगू से बचाओ, आपकी एहतियात, आपकी हिफाजत।
3: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया।
5: किसी भी इंसान के लिए सबसे अहम होती है उसकी सेहत।
6: किसी भी शख्स को देख के उसकी सेहत के बारे में अंदाजे ना लगाएं।
5: मुझे पता है कि मेरा वजन ज्यादा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं वॉक नहीं करता।
7: जी हाँ, मुझे भी लोग मोटी कहते हैं, मगर ऐसा नहीं कि मैं बहुत खाती हूँ।
8: हम बिना किसी तहकीक के बस बातें बनाने का फन जानते हैं। सामने वाले पर क्या गुजरी हमें से क्या।
5: मैं ओबेसिटी का शिकार हूँ, सिर्फ वॉक से ये कम हुई।
7: मोटापा एक बीमारी है, सिर्फ मीठा ना खाने से खत्म नहीं होगी।
8: सिर्फ बातें बनाने से हम इसका मुकाबला नहीं कर सकते।
7: अभी इसी वक्त अपना BMI चेक करवाइए,
5: यानी अपने वेट को अपनी हाइट की मुनासिबत से जांचिए
8: और इस वजन की असल हकीकत को समझे।
5: आइए वेट से आगे का सोचें।
3: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया।
9: ईमेल हर अदारे के लिए एक इंतहाई अहम जराए इबलाग है, लेकिन सिर्फ एक गलत क्लिक पूरे नेटवर्क को खतरे में डाल सकता है। साइबर मुजरिमों की जानिब से हुकूमती और निजी शोबे के मुलाजमीन को मुसलसल फिशिंग ईमेल्स भेजे जा रहे हैं। इनका क्या मकसद है? आपकी लॉगिन तफसीलात चोरी करना, सिस्टम्स को रैंसमवेयर से मुतासिर करना या गैर मजाज रसाई? महफूज रहने के लिए हमेशा ये बेहतरीन तरीके अपनाएं। हमेशा भेजने वाले की शनाख्त चेक करें, खसूसन एड्रेस। हमेशा अटैचमेंट की फाइल एक्सटेंशन चेक करें। PTA.txt महफूज है, लेकिन PTA.txt txt.exe نقصان دہ ثابت ہو سکتی ہے. اٹیچمنٹ کھولنے سے پہلے ضرور سکین کریں. ای میل استعمال کرنے کے بعد ہمیشہ لاگ آؤٹ یا سائن آؤٹ کریں. ان خطرناک عادتوں سے ہمیشہ بچیں. سرکاری ای میل کو ذاتی یا غیر سرکاری کاموں کے لیے استعمال نہ کریں. کسی بھی لنک پر کلک کرنے سے پہلے اصل یو آر ایل ضرور چیک کریں. کلک کرنے سے پہلے ایک بار ضرور دیکھیں. اپنا ای میل پاس ورڈ کسی کے ساتھ ہرگز شیئر نہ کریں. پاس ورڈ، او ٹی پی یا حساس معلومات ای میل کے ذریعے کبھی بھی نہ بھیجیں. ہیکرز اکثر فوری کاروائی، دھمکی، لالچ یا جھوٹے وارننگ سائنز ضرور دیتے ہیں تاکہ آپ گھبرا کر فوراً کلک کر دیں. اگر کوئی ای میل بہت زیادہ ضروری، بہت زیادہ پرکشش اور غیر معمولی طور پر مشکوک لگے تو ایک بار ضرور رک جائیں اور اس کی تصدیق کریں. فیشنگ ای میل سے کیسے بچیں؟ اپنے آپ کو اور اپنے ادارے کو محفوظ رکھنے کے لیے دھمکی آمیز یا جذباتی زبان والی ای میل سے محتاط رہیں. نامعلوم یا شارٹ لنکس پر ہرگز کلک نہ کریں. بھیجنے والے کا مکمل ای میل ایڈریس ضرور چیک کریں. اٹیچمنٹ سے خاص طور پر محتاط رہیں، خصوصاً exe.bat.vbs.msi اور دیگر ایگزیکیوٹیبل فائل سے لوگو اور گرافکس آسانی سے جعلی بنائے جا سکتے ہیں. ان پر اندھا اعتماد نہ کریں. کسی بھی مشکوک ای میل کی فوراً اپنے ادارے کی آئی ٹی ٹیم کو اطلاع کریں. آپ کی ہوشیاری ہی پہلی دفاعی لائن ہے. ہوشیار رہیں، محفوظ رہیں. یہ پیغام پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی کی جانب سے پیش کیا گیا ہے. ڈیجیٹل دنیا میں محفوظ قدم، پی ٹی اے.
1: یہ مفاد عامہ کا پیغام اب تک پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی کی جانب سے پیش کیا گیا ہے.
10: FM 247 365.

0: This program was brought to you by Tufaan Hai. FM 100's time check. It's 8 p.m.
1: जब जिंदगी एक लफ्ज से रुक सी जाए, कैंसर, सिर्फ एक बीमारी नहीं, एक इम्तिहान है, हर दिन एक जंग से कम नहीं, एक ऐसी जंग जिसमें बहुत से लोग नाउम्मीद हो जाते हैं, मगर अब मायूसी उम्मीद में बदल रही है। डाउ कॉम्प्रिहेंसिव कैंसर सेंटर, हुकूमत सिंध का वो कदम जहां कैंसर का इलाज अब एक नए मायार पर मुमकिन है। गामा नाइफ एडवांस टेक्नोलॉजी के जरिए ब्रेन ट्यूमर का बगैर सर्जरी के इलाज किया जाता है, जो उमूमन एक ही दिन में मुमकिन होता है, और इसके जरिए एडवांस स्टेज ब्रेन ट्यूमर्स यानी तीसरे और चौथे स्टेज के साथ मल्टीपल मेटास्टेटिस का इलाज भी मुमकिन है। जदीद तरीन MR लिनक मशीन की बदौलत अब कैंसर जिस्म के किसी भी हिस्से में छुप नहीं सकता, दौरान इलाज इसे बराह रास्त देखा जा सकता है और रेडिएशन को उसके रिएक्शन के मुताबिक फौरन एडजस्ट किया जाता है। यहाँ पूरे पाकिस्तान से आए हुए लोगों का इलाज मुफ्त किया जाता है। अब कैंसर का फौरी इलाज ख्वाब नहीं हकीकत बन चुका है, जो हुकूमत सिंध और चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी के विजन से मुमकिन हुआ, क्योंकि ये सिर्फ इलाज नहीं उम्मीद है हर उस चेहरे की जो जीना चाहता है। खिदमत में सबसे आगे सिंध।
2: शेयर बंडल्स, वो भी डिस्काउंट पर, सब्सक्राइब करना तो बनता है, तो बस अभी जैस कैश ऐप से जैस V5 फैंटास्टिक बंडल लगाओ और पाओ 2000 रुपए तक का बेहतरीन डिस्काउंट अपने फेवरेट बंडल्स पर। बड़े डिस्काउंट्स के लिए जैस कैश है ना।
0: This program is brought to you by
3: Hire Kanaya No Frost IoT Refrigerator Twin Inverter Technology जिससे मिले maximum cooling और energy saving. No frost, no worries.
0: FM 100. Like us on facebook.com/FM247365. FM 247365. FM 100. 31 साल FM 100 आपकी आवाज। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान।
2: अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। पाकिस्तान।

0: स्पेशल क्वालिटी सोप और सेवैया।
1: हुर्मत रसूल का तकाजा है कि तौहीन रिसालत से मुतालिक किसी भी खबर को बिना किसी तस्दीक के ना फैलाएं। ये पैगाम मुफादेआमा के लिए वजारत इत्तिलात व नशरियात व कौमी विरसा और FM 100 की जानिब से पेश किया गया।
2: 100 FM।
1: कुरानी आयात और अहदीस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एहतराम हम सब पर फर्ज है। ताज़ीरात पाकिस्तान के सेक्शन 295B के तहत कुरान पाक की तौहीन काबिले सजा जुर्म है, जिस पर उम्र कैद की सजा हो सकती है। इसको गंदगी या रद्दी में ना फेंका जाए। ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान और FM 100 की जानिब से पेश किया गया।
0: जब जिंदगी एक लफ्ज से रुक सी जाए, कैंसर, सिर्फ एक बीमारी नहीं, एक इम्तिहान है। हर दिन एक जंग से कम नहीं, एक ऐसी जंग जिसमें बहुत से लोग नाउम्मीद हो जाते हैं। मगर अब मायूसी उम्मीद में बदल रही है। डाउ कॉम्प्रिहेंसिव कैंसर सेंटर, हुकूमत सिंध का वो कदम जहां कैंसर का इलाज अब एक नए मायार पर मुमकिन है। गामा नाइफ एडवांस टेक्नोलॉजी के जरिए ब्रेन ट्यूमर का बगैर सर्जरी के इलाज किया जाता है, जो उमूमन एक ही दिन में मुमकिन होता है। और इसके जरिए एडवांस स्टेज ब्रेन ट्यूमर्स यानी तीसरे और चौथे स्टेज के साथ मल्टीपल मेटास्टेटिस का इलाज भी मुमकिन है। जदीद तरीन MR लिनक मशीन की बदौलत अब कैंसर जिस्म के किसी भी हिस्से में छुप नहीं सकता। दौरान इलाज इसे बराह रास्त देखा जा सकता है और रेडिएशन को उसके रिएक्शन के मुताबिक फौरन एडजस्ट किया जाता है। यहाँ पूरे पाकिस्तान से आए हुए लोगों का इलाज मुफ्त किया जाता है। अब कैंसर का फौरी इलाज ख्वाब नहीं, हकीकत बन चुका है, जो हुकूमत सिंध और चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी के विजन से मुमकिन हुआ। क्योंकि ये सिर्फ इलाज नहीं, उम्मीद है हर उस चेहरे की जो जीना चाहता है। खिदमत में सबसे आगे सिंध।
3: शेयर बंडल्स, वो भी डिस्काउंट पर। सब्सक्राइब करना तो बनता है, तो बस अभी जैस कैश ऐप से जैस V5 फैंटास्टिक बंडल लगाओ और पाओ 2000 रुपए तक का बेहतरीन डिस्काउंट अपने फेवरेट बंडल्स पर। बड़े डिस्काउंट्स के लिए जैस कैश है ना।
4: This program is brought to you by
5: Hire Kan Naya No Frost IoT Refrigerator Twin Inverter Technology जिससे मिले maximum cooling और energy saving. No frost, no worries.
6: बैन अल-अक़वामी सफर पर रवाना होने वाले मुतवज्जो हों, ऐसी ऑनलाइन एप्स और प्लेटफॉर्म से इज्तनाब करें जो पैसों की इवज किसी नामालूम शख्स का सामान आपके अपने सामान के साथ ले जाने के लिए करें। यह आसान कमाई का तरीका तो नजर आता है, लेकिन हकीकत में खतरनाक जाल है। मंशियात फरोश इन्हीं तरीकों को इस्तेमाल करके मंशियात स्मगल कर रहे हैं। याद रखें, अगर आपके सामान से मंशियात बरामद हुई तो कानूनन इस जुर्म के जिम्मेदार सिर्फ आप होंगे। खबरदार, किसी अजनबी का सामान दौरान सफर अपने साथ ले जाना आपके लिए खतरनाक हो सकता है।
1: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया।
7: कुदरत का निजाम तवाज़ुन पर कायम है।
8: वसाइल से ज्यादा आबादी के बोझ से तवाज़ुन बिगड़ जाता है।
7: घर के अफराद और आमदन में तवाज़ुन
9: हमारी जिम्मेदारी है।
10: खानदानी मंसूबाबंदी के तरीकों पर अमल करके अपनी जिम्मेदारी पूरी करें।
1: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया।
4: Like us on facebook.com/FM247365
11: FM247365.
12: Let's celebrate
13: 31 years of memory, milestone and moments. FM 100 Pakistan.
14: FM 100.
13: It's a legacy.
2: Assalamu alaikum, Pakistan. Let's celebrate the journey.

0: Come on.
1: तूर पर गूंजती मूसा की ये सदा है, जो हर शय में नजर आए बस वो ही खुदा है, खुदा है, खुदा है।

0: This program is brought to you by
1: Higher Kanaya No Frost IoT Refrigerator Twin Inverter Technology जिससे मिले Maximum Cooling और Energy Saving No Frost No Worries
2: एक लड़की जब पढ़ेगी तो अपने पैरों पर खड़ी होगी एक लड़की जब पढ़ेगी तो खुद मुख्तार बनेगी एक समझदार माँ बनेगी सिर्फ अपनी ही नहीं बल्कि सारे घराने की जिंदगी बदलेगी आने वाली नस्लें संवारेगी एक लड़की जब पढ़ेगी तो मुल्क को मजबूत बनाएगी पाकिस्तान का आईन और कानून हर लड़की और लड़के को मुफ्त तालीम का हक फराहम करता है लड़की को पढ़ाएंगे तभी तो आगे जाएंगे वजारत इंसानी हुकूक हुकूमत पाकिस्तान
3: मुफादे आम्मा के लिए पैगाम हुकूमत पाकिस्तान और FM 100 कराची की जानिब से पेश किया गया
4: कभी सोचा है कि अब जंग की सूरत क्या है अब जंग मैदान जंग में नहीं हमारे जहनों में लड़ी जा रही है अब दुश्मन की गोलियां बारूद नहीं मालूमात है और निशाना हम सब रियासत मुखालिफ ताकतें हमारे घरों के दरवाजे तक पहुंच चुकी हैं टेक्नोलॉजी और इंटरनेट के पर्दे में दुश्मन छुपा बैठा है वो ढूंढता है कमजोर लम्हे बेरोजगार नौजवान जरूरतमंद खानदान फिर उनके सामने बिछाता है ख्वाब बड़ी नौकरी तेज दौलत बैरून मुल्क सफर और फिर कभी रिपोर्टर की सूरत में कभी एनजीओ वर्कर या फ्रीलांसर बनकर उनसे वो रास निकलवाता है जो दुश्मन का रास्ता खो देते हैं जिनसे बदमनी खौफ और फसाद हमारी गली कूचों तक उतर आते हैं हमें अपनी ही मट्टी के खिलाफ खड़ा कर देता है जो आपसे मालूमात लेता है वो आपकी जात तक पहुंचता है आपकी तस्वीरें पहचान फोन सब कुछ खतरे में डाल देता है तो याद रखिए किसी अजनबी को अपनी कोई हसास बात ना दीजिए कोई मशकूक चीज कॉल या पेशकश हो फौरन रिपोर्ट कीजिए हसास मकामात बस अपने इदारे तक रखिए क्योंकि हर लफ्ज हर क्लिक हर तस्वीर या तो हिफाजत है या खतरा फैसला आपके हाथ में है
3: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया
5: Us on Facebook.com/FM247365.

0: It's 9:45 p.m. This time check is brought to you by Phoenix Batteries. Phoenix laga aur bhul ja. Phoenix laga aur bhul ja. This program is brought to you by
1: Hire Kannaya, no frost IoT refrigerator, twin inverter technology jisse mile maximum cooling aur energy saving. No frost, no worries.
2: तेजी से फैलती डिजिटल दुनिया एक जबरदस्त सलाहियत के साथ साथ एक अहम जिम्मेदारी भी। मजहबी, फिरका वाराना या नस्ली बुनियाद पर नफरत अंगेजी, दहशत गर्दी की तरगीब से मुतल्लिक किसी भी तरह का मवाद फैलाना, इलेक्ट्रॉनिक जालसाजी, स्पैमिंग, धोखादही, बशमूल आइडेंटिटी थेफ्ट, चाइल्ड पोर्नोग्राफी और साइबर स्टॉकिंग और अनचाही मुदाखलत, मसलन किसी भी फर्द से जबरदस्ती या बार बार राबता करना, मुतल्लिका शख्स की रजामंदी के बगैर उसकी तस्वीर या वीडियोस बनाना और शेयर करना वगैरह संगीन जराइम है। इस तरह की खिलाफ वर्जियाँ पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट और दीगर कानून के तहत कानूनी नतायज की मुतहम्मिल हैं। अगर आप इस बारे में कोई सवाल करना, इस सिलसिले में मदद तलब करना, किसी वाकये की इत्तला देना या इन कवानीन की खिलाफ वर्जी के मुर्तकिब अफराद के बारे में हुकूमत की मुआवनत करना चाहते हैं तो बराह करम हमारी हेल्पलाइन पर कॉल करें।
0: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया।
3: डेंगू एक खतरनाक बीमारी है जो मच्छर के काटने से फैलती है। सुबह सूरज निकलने के बाद और शाम सूरज गुरूब होने से पहले ये मच्छर आपको काट सकता है। अगर आपको अचानक तेज बुखार, शदीद सरदर्द, जिस्म और जोड़ों में दर्द, मतली या कमजोरी महसूस हो तो फौरन डॉक्टर से रुजू करें। डेंगू का मच्छर साफ पानी में पैदा होता है, इसलिए घर और इर्द गिर्द कहीं भी पानी जमा ना होने दें। पानी की टंकियों को ढांप कर रखें, गमलों और कूलर का पानी बाकायदगी से तब्दील करें, लंबी आस्तीन वाले कपड़े पहने, मच्छर मार स्प्रे और मच्छरदानी का इस्तेमाल करें। याद रखें, एहतियात ही डेंगू से बचाव का बेहतरीन तरीका है। डेंगू से बचाओ, आपकी एहतियात, आपकी हिफाजत।
0: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया।
4: क्या आप जानते हैं कि आपका मोबाइल बैलेंस गैर इरादी तौर पर भी खत्म हो सकता है? ये अक्सर इस वक्त होता है जब आपका डेटा पैक खत्म हो जाता है लेकिन इंटरनेट पे एज यू गो रेट्स पर चलता रहता है, जिससे बैलेंस तेजी से कम हो सकता है। पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी की जानिब से सार्फिन को आगाह किया जाता है कि ऐसे गैर जरूरी चार्जेस से मुहतात रहें। मोबाइल फोन ऑपरेटरों की जानिब से इस मसले के हल के लिए एक मुफीद और मुफ्त सर्विस मुतारिफ कराई गई है। इस सर्विस के जरिए आपका डेटा पैक खत्म होते ही इंटरनेट का इस्तेमाल खुदकार तौर पर बंद हो जाएगा ताकि आपका कीमती बैलेंस महफूज रहे। सर्विस फाल करने के लिए दर्ज सेल कोड्स डायल करें। जैज सार्फिन के लिए *275#, जोंग सार्फिन के लिए *4004#, यूफोन सार्फिन के लिए *6611# और टेलीनॉर सार्फिन के लिए *342#। अपना बैलेंस महफूज रखें और गैर जरूरी चार्जेस से बचें। डिजिटल दुनिया में महफूज कदम पीजिए।
5: ये मुफादे आमाल का पैगाम आप तक पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी की जानिब से पेश किया गया है।
4: कम्युनिकेशन अथॉरिटी की जानिब से तमाम मोबाइल फोन सार्फिन को आगाह किया जाता है कि वो इस बात को यकीनी बनाएं कि उनके कंप्यूटराइज कौमी शनाख्ती कार्ड फाल होने चाहिए। याद रखें, अगर आपके जेर इस्तेमाल सिम के साथ मुंसलिक शनाख्ती कार्ड मंसूख कर दिया गया है या इसकी मियाद खत्म हो गई है या शनाख्ती कार्ड का हामिल फर्द वफात पा गया है तो आपकी मोबाइल फोन सर्विस मुअत्तल की जा सकती है। लिहाजा किसी भी जहमत से बचने के लिए मोबाइल फोन सार्फिन को चाहिए कि जिन शनाख्ती कार्ड की मियाद खत्म हो चुकी है उनकी फौरन तजदीद करवाएं। शनाख्ती कार्ड की मनसूखे से मुतल्लिक किसी भी मसले के हल के लिए नादरा से रजू करें और इस बात को यकीनी बनाएं कि सिम किसी वफाशुदा फर्द के शनाख्ती कार्ड पर रजिस्टर्ड ना हो। अगर आपकी सिम किसी वफाशुदा शख्स के शनाख्ती कार्ड पर रजिस्टर्ड है तो कानूनी वारिस मुतलका कंपनी के सर्विस सेंटर मजाज फ्रेंचाइजीज पर जाकर जरूरी दस्तावेजात जमा करवा कर सिम की मलकियत अपने नाम करवा सकते हैं। शनाख्ती कार्ड की बरवक्त तजदीद मोबाइल फोन सार्फिन के तसलसल को यकीनी बनाने में मददगार साबित हो सकती है। पीटीए आपकी शनाख्त के तहफ्फुज़ और सार्फिन को महफूज टेलीकॉम सर्विस इसकी फराहमी के लिए पुर अज़्म है। डिजिटल दुनिया में महफूज कदम पीटीए।
0: FM 100 Like us on Facebook.com/
6: FM 24/7 365.
7: Back to back, back to back. Only music, no RJ talk.
8: Only music, no RJ talk.
7: This is FM.

0: This program was brought to you by
1: Higher Kanaya No Frost IoT Refrigerator Twin Inverter Technology जिससे मिले Maximum Cooling और Energy Saving No Frost No Worries
0: FM 100's Time Check It's 10 PM
2: Shared Bundles वो भी डिस्काउंट पर सब्सक्राइब करना तो बनता है तो बस अभी जैस कैश ऐप से जैस V5 फैंटास्टिक बंडल लगाओ और पाओ 2000 रुपए तक का बेहतरीन डिस्काउंट अपने फेवरेट बंडल्स पर बड़े डिस्काउंट्स के लिए जैस कैश है ना
3: FM247365 FM247365 FM100
4: 31 साल FM100 आपकी आवाज अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान
5: अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान पाकिस्तान

0: तक का बेहतरीन डिस्काउंट अपने फेवरेट बंडल्स पर, बड़े डिस्काउंट्स के लिए जैस कैश है ना।
1: FM 24/7/365

Assalamu alaikum, assalamu alaikum, Pakistan! मेरा नाम है नदीम अख्तर, प्यार से आप लोग मुझे कहते हो एने सोनियो। म्यूजिक ट्विस्टर में मैं हूँ आपके साथ, आपका और मेरा साथ है जनाब एक बजे तक, और एक बजे तक बुल्ला इस इंटरव्यू में शामिल होने का बहुत ही आसान सा तरीका है। अपने मोबाइल के राइट मैसेज में जाइए कि चाहे लिखिए स्पेस दीजिए अपना प्यार से नाम प्यार से मैसेज और उसको सेंड कर दीजिए 3636 पर। जो लोग इस वक्त कार ड्राइव कर रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज अपनी गाड़ी की हेडलाइट लो बीम पर रखें, ट्रैफिक सिग्नल के पास जारी कीजिए, बड़ी मेहरबानी होगी आपकी। अच्छा सुने हो, बहुत सारे मेरे लिसनर सोच रहे होंगे यार नदीम भाई किथे रह गए यार, कभी कभी गाड़ी का टायर भी पंचर हो जाता है मोटरसाइकिल का, तो टायर पंचर हो जाए तो फिर उसमें यानी आसान है ना, थोड़ा सा टायर लग जाता है। तो बस कुछ ऐसा ही हुआ कि मोटरसाइकिल का हो गया टायर पंचर, तो इस वजह से हम हो गए थोड़े लेट। खैर जी, कोई ना कोई सवाल फ्लोट करता हूं मैं और देते हैं आप लोग उसका जवाब, वो भी करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको वार्म अप करेंगे, और वार्म अप कुछ इस तरह करेंगे जनाब।

0: Like us on facebook.com/FM247365. FM247365.
1: Welcome back, Adite. Has a bolve? Najinde sadi rolve? ब्यूटीफुल ट्रैक और उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको आया होगा पसंद. मैसेज कर रहे हैं आप के चॉइस पे, आपका नाम, आपका मैसेज उसको सेंड कर रहे हैं 36361. सवाल फ्लोट करते हैं आज बहुत जबरदस्त सा, बताएं वो क्या है, बताएं वो क्या है. जो खरीदने पर काला, जलाने पे लाल और फेंकने पे सफेद हो जाता है. बस ये बताना है आपने, वो क्या है जो खरीदने पर काला, जलाने पर लाल और फेंकने पर सफेद हो जाता है. ये आपने बताना है 3636 बार. और मैसेजेस जाहिर है यार, मैं इतनी देर से आया हूँ, बहुत से लोग तो ऐसे हैं जो सोच रहे होंगे कि भाई नदीम भाई शायद आज आए नहीं यार, क्या पता नदीम भाई पंचर बनवा रहे हैं. खैर जी, इस तरह तो होता है इस तरह के कामों में, नो प्रॉब्लम. और मैं देख रहा हूं कि शायद कोई यार भूले भटके से आ जाए. वाह भाई वाह, मुश्क आ गई है भूले भटके से. मुश्क बहुत दिनों के बाद, क्या बात है. अच्छा कह रही है कि हैंडसम जल्दी से बताएं, सबको तो सलाम कहा है सबसे पहले उन्होंने. मुश्क कह रही है कि तमाम सुनने वालों को सलाम. और कहती है कि हैंडसम जल्दी से बताएं वो कौन से सवालात थे जिस पर नुसरत फतेह अली खान ने कहा था, उसने शर्मा के मेरे सवालात पर ऐसे गर्दन झुकाई कि मजा आ गया. भाई पहले मैंने ओके ठीक है, हंसी मजाक वाला है, अच्छी बात है. ठीक है जनाब, नो प्रॉब्लम. और भी आप मैसेजेस कर रहे हैं, जिन्होंने अभी सुनना शुरू किया हो तो वो बता सकते हैं. सवाल मैं रिपीट दोबारा कर देता हूँ, वो कौन सी चीज है जो खरीदने पर काली, जलाने पर लाल, बगौला और फेंकने पर सफेद हो जाती है. ये बताना है आपने. और आपको लेके चलते हैं एक और बहुत प्यारे से ट्रैक, जाने बल्लो फड़ो.

0: वेलकम बैक आएंगे सुनियो आप सबको। हमारे नवीद भाई, छोटे भाई नवीद भाई, कॉल नहीं किया करें, यानी कि समझ रहे हैं ना आप? हाँ, समझा करें। और हमारे सलीम मेमन भाई जो हैं, उनसे भी रिक्वेस्ट है कि यार हमारे छोटे भाई को जरा समझाओ, इस तरह ना किया करें भाई, ना किया करें। एनीवे जनाब, मैंने एक सवाल फ्लोट किया है, उसका देना है आपने जवाब कि वो क्या है जो खरीदने पर काला, चलने पर लाल भगोला और फेंकने पर सफेद होता है। एक छोटा सा सवाल किया है मैंने, बोला कि चले कुछ रिडल टाइप का सिलसिलाकार रख लें। और वैसे देर हो गई और इस देर की वजह से बेतहाशा मेरे प्यारे प्यारे से ऐसे लिसनर्स हैं कि जो इंतजार कर करके 15-20 मिनट में इधर उधर हो गए, उन्हें सोचा होगा कि नदीम भाई शायद नहीं आएंगे। तो कोई मसला नहीं है, इससे एक सबक मिलता है या नहीं मिलता? मिलता है जनाब, सबक ये मिलता है कि जो काम जिस वक्त का होता है उसकी अहमियत उसी वक्त होती है। अगर थोड़ी सी देर सवेर हो जाए तो यानी कि वो वक्त हाथ से निकल जाता है। इसी तरह इसी बात को, जैसे कि अभी बहुत से लिसनर्स जो हैं वो नहीं सुन रहे, लेकिन यकीनन बहुत से हमारे प्यारे प्यारे से लिसनर्स सुन रहे होंगे और मेरी बात पर थोड़ी सी गौर फिक्र भी कर रहे होंगे, तवज्जो भी दे रहे होंगे। बात दरअसल ये है कि जिंदगी में बहुत सारे ऐसे फैसले होते हैं जो कि हम वक्त पर नहीं कर रहे होते। उसका जो वक्त होता है, अगर वो फैसला उसी वक्त पर ले लिया जाए तो इंसान को कामयाबी भी मिलती है, तरक्की भी मिलती है और उस फैसले का नेगेटिव या पॉजिटिव जो भी अमल होता है वो उसके सामने जल्द आ जाता है। जैसे कि हमारे इरफान मेमन साहब हैं, इरफान मेमन साहब जो हैं वो वक्त पर फैसला नहीं ले पा रहे कि मुझे शादी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। तो ये वक्त अगर इरफान मेमन हाथ से निकल गया ना, तो यानी कि समझ आए ना आप, सब ठाट पड़ा रह जाएगा। आगे का जुमला क्या है ये आप लोग बताइएगा, सब ठाट पड़ा रह जाएगा। संजू भी आ गई हैं भाई, संजू आ गई हैं। अरे क्या बात है भाई, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। देर से आने पर भी खुशामदीद आफियत की दुआएं। नहीं मजा नहीं आया भाई संजू, मजा नहीं आया। वो जो आपका आता है ना मैसेज, हाँ बेहतरीन वाला, जो दुआएं दिल से निकल रही होती हैं, वो होना चाहिए भाई। देर से आने की वजह बता दी, हजम नहीं हो रहा। हकीकत है, समझा करो। यानी कि भाई इस तरह तो होता है इस तरह के कामों में। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं भाई आप? लाला संजीदा आपी मोश मानूर और सब सुनने वालों को सबगुल का प्यार भरा सलाम। वालेकुम अस्सलाम, जीती रहो मुस्कुराती रहो। आखिरकार आ गए भाई, क्लिफ्टन से आ गए भाई, क्लिफ्टन से कन्नान बोल रहा हूँ और सबको सलाम कह रहा है नदीम भाई। गुलाबी आंखें गाना मेरे शहजादे, पाकिस्तानी गाने बताओ, लेकिन आपका नाम बड़ा जबरदस्त है, आपके नाम के क्या मायने हैं? और आप ये बताएं कि आपके नाम से मुंसलिक एक जगह भी है और वो उसकी वजह शोहरत क्या है? अच्छा मैंने तो एक रिडल आपके लिए रखा ही है और रिडल बड़ा जबरदस्त है। रिडल ये है कि बताएं वो क्या है जो खरीदने पर काला, जलाने पर लाल और फेंकने पर सफेद होता है। ये तो खैर मैंने रिडल लगाया, लेकिन इनके नाम से, कनान के नाम से जो है मेरे जहन में एक बड़ा जबरदस्त सा सवाल आया है। बहुत से लोगों को शायद इसके हवाले से पता नहीं हो, लेकिन पता होना चाहिए। तो कनान जो है ये कहां वाक़े है और इससे मुंसलिक क्या बात है, किसी को अगर पता हो तो क्या मजा आ जाएगा। यकीन माने बात सीरियस होगी, बड़ी मजेदार किस्म की होगी। हंस क्यों रहे हो भाई? कन्नान, गुफरान, इस पर भी गुफरान और कन्नान, कन्नान का पता है वैसे तुम्हें गुफरान? गुफरान भाई आपको पता है कन्नान के हवाले से जो मैं बात कर रहा हूँ? चाय पी रहे पानी की जरा आ रहे हो, ये भी आ रहे। अच्छा जी अमीन शहजादा आ गया है मेट्रोवेल से, कह रहे अस्सलाम वालेकुम नदीम भाई, सारा खुश रहे, शो भी आए भी औसम बिंदास बोले तो झगास, स्वीट फैमिली को सलाम, सबा गुल लाला डेडिक ओके ओके सॉन्ग कहो एक थैंक यू। ये क्या लिख दिया भाई, आगे हकलाने लगे हो तुम सबा गुल का नाम लिखने के बाद। ला डिडिक्ट ओके औ सिंह कहो एक दिन मेरे ख्याल है कहो एक दिन के गाने में डेडिकेट कौआ। अच्छा वो पख्तू नहीं लिखे ये भाई जन, ये तो गाना। अच्छा मैं समझाऊ, मैं समझा हकला नहीं लगा, यो संदरा डेडिकेट कौआ जी, बिल्कुल जी डेडिकेट कर देगा, लेकिन ये डेडिकेशन नहीं है, ये रिक्वेस्ट है और रिक्वेस्ट हम शायद आज पूरी कर दें। हाँ जी आप कुछ कह रहे थे कन्नान के बारे में, पता है आपको कन्नान के बारे में? एक हमारे बहुत ही प्यारे से लिसनर जिनका मैसेज फर्स्ट टाइम आया है, उनका नाम क्लिफ्टन से उन्होंने मैसेज किया है, कन्नान नाम है उनका, और सबको उन्होंने सलाम भी कहा है और गुलाबी आंखों के बारे में उन्होंने कहा है। भाई गुलाबी आंखें वैसे होती हैं क्या ये बताएं? हल्की पिंकिश होती हैं आंखें, सोच लें भले जरा सोचें, हल्की पिंक होती है जिन्हें पता है। गुमरान भाई हंसने लगे हैं, पता नहीं क्यों हंस रहे और जनाब संजू के बड़े बेहतरीन किस्म के मैसेज आ गए हैं और कह रही है कि क्या कह रही है भाई,
1: दुनिया में सबसे ज्यादा
0: क्या
1: है, दुनिया में सबसे ज्यादा आंखों का कलर क्या है, कौन
0: सा बताना हूँ अभी आपको काला मानो या न मानो काली आंखें, वाह वाह। हर दो लोगों के दरमियान ताल्लुक मोहब्बत नहीं होता, पता है आपको? कुर्सी पाओ अजीब अजीब सी बातें कर रही है, ब्राउन पता है मुझे। अच्छा भाई बड़ा अच्छा सा मैसेज है और ये बड़ा तवज्जो से मैं पढ़ रहा हूँ इनके मैसेज संजू के, कहती है हर दो लोगों इसके पर चर्चा कीजिएगा, गुफरान भाई आप चर्चा कीजिएगा, हर दो लोगों के दरमियान ताल्लुक मोहब्बत नहीं होता, कुछ लोग हमें पसंद आते हैं उनके अल्फाज की वजह से क्योंकि वो हमारे हालात से मुताबिकत रखते हैं। वाह वाह वाह वाह वाह भाई ये अच्छी बात है, इसी वजह से कुछ लोगों की बातें जो हैं वो पसंद आती हैं कि मुताबिकत रखती हैं। ये उर्दू के जो चुनाव है ना लफ्जों का, क्या बात है संजू। कुछ लोगों की सोच हमें पसंद आती है क्योंकि वो हमें उम्मीद की रूह बख्शते हैं। वाह वाह वाह वाह वाह कितनी गहरी बातें हैं, वाह वाह वाह वाह वाह वाह वाह क्या तर्जुमानी कर रहे हैं गुफरान भाई, मैं आपको बता नहीं सकता। और आगे है क्योंकि वो हमें उम्मीद की रूह बख्शते हैं और कुछ लोग हमें पसंद आते हैं क्योंकि वो हमें अपनी मुस्कुराहट से खुश कर देते हैं। तो अब आप खुश हो जाइए, यानी कि समझ रही है ना आप? अच्छा जनाब, अच्छा जनाब नेगेटिव सोचे आगे सब ठाट पड़ा रह जाएगा जब क्या बताओ लार लाद चलेगा बंजारा, सब ठाट पड़ा रह जावेगा। क्या यार मिसालें होती थी पहले, इस तरह की मिसालें होती थी, नसीहतें होती थी। अब नसीहत वैसे कभी किसी ने की है आपको? संजू आपको की किसी ने नसीहत? जरा बताइएगा, आपके मैसेज पढ़ रहा था मैं। जब किसी से मोहब्बत हो जाए तो सदका दिया करें, मोहब्बत हुई तो मिल जाएगी और बला हुई तो टल जाएगी, नहीं बला हुई तो बेटा शादी हो जाएगी सलीम मेहमान आया अच्छा सदका सिर्फ इसी के लिए होता है मोहब्बत हो जाएगी? अबे सदके और भी चीजों के लिए होते हैं, बला टलाने के लिए। वैसे सदके से अगर बला टल जाती तो सबसे पहले बीवी गायब होती सब सदके दे रहे होते अयो बाप रे दी भाई जाने जगर ये अभी भी आपको और सब गुल खोर इना गुल खोर होश खोर मानूर खोर तमाम सुनने वालों को सलाम वालेकुम अस्सलाम। अच्छा भाई और मैं तो हूँ शरारती और शरीर और मरीज छोटे हैं हैं जी ते हैं जी से नहीं मन कह रहे शरारती मजीद। अरे यार दो मिनट ये बड़ा जबरदस्त है। मैं मेरा दिल चाह रहा है कि इसका कोई जवाब दे और एक जवाब कन्नान का। कन्नान के मायने पर्दा, गिलाफ और ढांपने या हिफाजत करने वाली चीज। ये अरबी का लफ्ज है। अहम बातें लुगवी मायने ऐसी चीज जो किसी दूसरी चीज को छुपाए और उसकी हिफाजत करे। बहुत अच्छी बात। नाम के तौर पर लड़के का ये नाम रखा जाता है जिसका मकसद हिफाजत और पर्दा मुराद लेना है। चले अब संजू ने इतनी अच्छी बातें बताई हैं तो मैं आपको भी बता रहा हूँ। कन्नान जो है वो एक जगह का भी नाम है और ये मुंसलिक है हजरत याकूब अलैहिस्सलाम से और हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम से।
1: वो कन्नान नहीं है, किनान है।
0: किनान है, जेर है उसमें। पक्की बात है? अच्छा मैं कन्नान समझता था।
1: यूसुफ की तो मैं सीरीज कई मरतबा देख चुका
0: हूँ। हाँ मैं भी देख चुका हूँ। किनान किनान वैसे कहाँ किनान ही बोल रहे थे। कन्नान किनान। अच्छा ये किनान भी बोल सकते हैं कन्नान भी। अच्छा इस प्रोनाउंस जो है वो डिफरेंट तरीके से होता है,
1: हो सकता है।
0: लेकिन
1: अरबिक में वो होता है ना,
0: अरबिक में। हाँ बिल्कुल बिल्कुल
1: बिल्कुल
0: तमाम किनान। तो इनका नाम किनान भी पढ़ सकता हूँ, कन्नान भी पढ़ सकता हूँ। कन्नान नहीं होगा यार, किनान नहीं होगा। यहाँ मैं प्रोनाउंस गलत कर रहा हूँ।
1: हाँ।
0: तो खैर एनीवे इस नाम को देखकर जो मेरे जहन में जो चीज आई वो मैं आप लोगों के साथ यही शेयर करना चाहता था। मगर बहुत ही खुशुसलूबी के साथ इसके जो लफ्जी मायने हैं वो संजू ने बताए। और संजू थैंक यू वेरी मच कि आपने लफ्जी मायने बताए। और इस वाकई में ये नाम ज्यादातर रखा जाता है और लड़कों का नाम रखा जाता है। बट क्योंकि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम और हजरत याकूब अलैहिस्सलाम से मुंसलिक जगह है किनान, तो मुझे वो याद आई।
1: अच्छा ये भी सवाल ये भी हो सकता है कि
0: जी
1: उस
0: जगह अबे भाई
1: किनान से कौन सी कौम निकली।
0: कौन सी कौम निकली मैं बताता हूँ आप। बनी इसराइल।
1: कैसे
0: वो
1: आप उनसे पूछे ना लोगों से।
0: नहीं नहीं वो नहीं बता सकेंगे, हर कोई नहीं बता सकता
1: है।
0: बहुत इजी है
1: बहुत लोगों को पता है लेकिन हम लोग क्या है रिपीट नहीं करते उसको, उसका रिवाइज नहीं करते।
0: अगर हम ये बड़ी प्यारी बात की गुफरान भाई ने और एक देखें कि कहां से सीरियस बात गुफ्तगू शुरू हो गई है और मजेदार गुफ्तगू हो रही है। मुझे अच्छा लग रहा है क्योंकि जनरल नॉलेज भी बढ़नी चाहिए ना थोड़ी सी, और खसूसी तौर पर अगर इस्लामिक जनरल नॉलेज आपकी में इजाफा हो रहा है तो ये और भी अच्छी बात है। और इसमें आपको मैं थोड़ा सा इसका ऐसे ही लुब्बे लुबाब बता देता हूं कि बनी इसराइल का जो आगाज है वो वहीं से हुआ है, किनान से ही हुआ है और हजरत याकूब अलैहिस्सलाम से हुआ है। और हजरत याकूब अलैहिस्सलाम का खिताब भी था इसराइल, तो ये बनी इसराइल इसी वजह से कहा जाता है।
1: कई लोग इसराइल के नाम से भी जानते थे,
0: इसराइल के नाम से भी जानते थे। बनी इसराइल से मुराद यही है कि इसराइल की कौम।
1: बिल्कुल
0: समझ रहे हैं ना, बनी इसराइल। तो बनी इसराइल जो है वो वहीं से कन्नान से ही जो है इसका आगाज हुआ है। तो ये आप लोगों की नॉलेज में ज्यादा है। जी बिल्कुल, बहुत नसीहत करते हैं कि अब सुधर जाओ। आपकी पसंद का सॉन्ग चाहिए बिल्कुल मिलेगा, आप बेहतरीन मिलेगा। तो क्यों ना अभी फिलहाल आपके लोग, आप जितने भी सुनने वाले हैं उनके जिस्म में बिजली जो है वो चमकाएं। तो कुछ बिजली अगर चमकेगी तो इस तरह चमकेगी।

0: वेलकम बैक आएंगे, बिजली भरी है मेरे अंग अंग में। यार क्या गाना था, आपको ये बताऊं कि आयमा बेग ने ट्रैक गाया और इसको कवर किया बेसिकली, और ये पाकिस्तानी मूवी का गाना है, नाहिद अख्तर की आवाज में था। वाह भाई, अयूब लाला केटाई, गुलबानो शेरबानो माहिन निगत के नाम। कोई अच्छा कोई भी सॉन्ग कर दें, बिल्कुल कर देंगे जनाब, बिल्कुल कर देंगे। गफरान भाई, क्या आप शादी के बाद खुश हैं? सलीम मेमन पूछ रहे हैं, कह रहे मैं खुश हूँ। सलीम मेमन, आप लग रहा है खुश नहीं है, क्योंकि आपको यकीन ही नहीं आ रहा कि वो खुश भी हो सकता है। वालेकुम अस्सलाम लाला, और गफरान भाई को भी सलाम एंड वालेकुम अस्सलाम। अमीन भाई को भी सबाबुल कह रही है। और अच्छा जनाब लाला, आपका मैसेज पढ़ लिया, जो कि सबा गुल, हिना गुल, मुश्क और महानूर को डेडिकेट करना भाई गाना एक, और इन चारों के नाम को मैशअप करना है, मैशअप गाना बिल्कुल कर देंगे जनाब, बिल्कुल कर देंगे, डोंट वरी डोंट वरी। और मैसेज कहां गया, हाँ सबा आए हैं, सबा कैसी हो, फ्रॉम कराची। अच्छा कराची, आरजे नदीम, आंसर इज ओके, थैंक्स। सबा तुम कितनी अकलमंद हो, बादाल खाती हो क्या, फौरन सही जवाब दे दिया। तुम्हें क्या सफेद, काली और लाल चीजें बहुत पसंद है, हैं सबा बताओ, क्योंकि सवाल मैं एक बार फिर रिपीट कर देता हूं, जिसका जवाब सबा ने सबसे पहले दिया है, और दुरुस्त दिया है या गलत दिया है ये हम आपको बताएंगे थोड़ी देर के बाद। लेकिन जवाब आया ना, ये बड़ी अच्छी बात है। सवाल रिपीट कर देता हूं कि वो क्या है, गफरान भाई वो क्या है, जो खरीदने पर काला, जलाने पर लाल भौरा, और फेंकने पर सफेद हो जाता है। नहीं नहीं नहीं, बस बात दिमाग में यही है, बस और कुछ भी नहीं है भाई। अच्छा जी, आपकी इन्फॉर्मेशन मेरे लिए नई है, ये कह रही है संजू। संजू ये नई तो नहीं है यार, आपके लिए तो, आप तो माशाल्लाह से बड़ी पढ़ाकू बच्ची हैं, आपको तो पता होना चाहिए। मैं अजीज तरीन दोस्त से शदीद वाली नाराज हूं, उसको बिजली वाला तार पकड़ा दे। आप अपना हाथ पकड़ा दें, पता चल जाएगा आप में कितना करंट है। वो कहेगा मैं बागी लड़कों जैसा नहीं हूं, समझ जाना ये उन सब का बज ये। गोलियां और टोपी ड्रामे, क्या बात है। किसी कम सियाने बाबे ने फरमाया है कि ज्यादा खूबसूरत औरत मिलने पर पहले वाली को छोड़ देना हिजरत कहलाता है। यार गुफरान भाई, आपने इस पर गौर किया कुछ, नए जमाने के हिसाब से उसे बेवफाई नहीं कहते, क्या ये दुरुस्त है? बिल्कुल गलत है हकीकत में, और मजाहतन बिल्कुल सही है। इस तरह तो होता है इस तरह के कामों में। अच्छा भाई ये कौन है, सबीन कुरैशी, हाय हाय, ये सुनो एक सवाल दिया सबीन ने, हाँ बनी इसराइल की कौम को कौन सी जुबान बोलती थी, ये हमसे पूछ रहे हैं। गुफरान भाई जवाब देंगे, बताए
1: जो मुंह में थी वही जुबान बोलती
0: थी। हाँ भाई, आपके मुंह में कौन सी जुबान है, हिलाए बल बल बल बल। ये वाली बल बल बल बल। नहीं वैसे,
1: अच्छा चलो इनके लिए हिंट छोड़ देते हैं, आज भी वो जुबान बोली जाती है।
0: हाँ आज भी बोली जाती है,
1: नई पुरानी फर्क भी है, नई पुरानी,
0: नई और पुरानी का भी फर्क है, ये भी बात बिल्कुल सही कह रहे हैं। बता दूं,
1: अब आप ढूंढ
0: लें, बता दूं मैं,
1: बता
0: दें ही, उसमें ही भी आता है। सही कह रहा हूँ ना। उसमें ही भी आता है, शी नहीं आता उसमें, ही आता है।
1: इंग्लिश उर्दू दोनों बता दें,
0: हाँ उर्दू में आप बता दें, मैंने इंग्लिश में शुरू का लफ्ज बताया, आप उर्दू में शुरू का लफ्ज बताएं सिर्फ। नहीं नहीं भाई, नहीं। ये गुफरान भाई हरारत थी। जी उर्दू में आप बताएं,
1: बताया मैं इब इब
0: बताया, इब इब इब, इन्होंने इब बताया, मैंने ही बताया, मैंने अंग्रेजी में उसका जो है, सबीन बताओ हम दोनों ने से बताया, हम पूरा नाम नहीं बता रहे हैं, लेकिन हमें पता है। अच्छा भाई रानी मेरी प्यारी सी बहना आ गई। रानी मैसेज कर दिया करो। संजू तुम्हारी इतने सारे मैसेज और आ गए, अब सुकून से सुन रही हूँ। पहले क्या घूम घूम के सुन रही थी, सीढ़ियां उतर चढ़ के सुन रही थी। कह रही है जरीन नूर को और नौरीन बहना के लिए प्यार भी प्यार। हाँ नौरीन बहना जो है वो पता नहीं कहाँ गायब है। यार मेरा ख्याल है कि हमें एक गाने की जानब जाना चाहिए। ये हमारे प्यारे से जो है ना गुफरान भाई ने बड़ी प्यारी सी लिस्ट बनाई हुई है मेरे लिए। उन्होंने बोला नदीम भाई कि बाइक का टायर पंचर हो गया तो मैं उनके लिए क्यू शीट बना दूं। तो ये क्यू शीट जो आप सुन रहे हैं ना ये हमारे गुफरान भाई की बनी हुई है। तो एलो भड़ो जनाब।

0: वेलकम बैक कहेंगे जनाब। अच्छा किनान का जो जिक्र आया, किनान भाई आपने क्लिफ्टन से जो हमें मैसेज किया और आपके उस मैसेज से एक बहुत जबरदस्त सी एक लड़ी चल पड़ी इन्फॉर्मेशन की बनी इसराइल के हवाले से। सभी ने कहा बनी इसराइल की कौम कौन सी जुबान बोलती थी, तो मैंने ही बोला और आपने ई बोला और सभी ने जवाब दे दिया इब्रानी उर्दू में और हीब्रो जो है वो इंग्लिश में कहते हैं। ये अच्छा आपको ये भी बात बता दूं सबीन, अगर आपको पता है तो जरूर बताइएगा कि हीब्रो अभी भी बोली जाती है, बताओ उससे। हाँ हीब्रो अब कौन से मुल्क में बोली जाती है? न्यू हीब्रो ही है वो, पुरानी तो नहीं है। पुरानी में तो जो अल्फाज इस्तेमाल होते थे वो, नई जो हीब्रो है उसमें वो तमाम नहीं होते, लेकिन होते हैं, ऐसा भी नहीं है कि नहीं होते। लेकिन आप ये, आपसे सवाल ये है कि हीब्रो या इब्रानी जो है उर्दू में जो आपने लिखा है, ये जुबान अभी भी बोली जाती है और कौन से मुल्क में बोली जाती है ये बताइएगा। ये सवाल सिर्फ और सिर्फ सबीन से, सबका इम्तिहान नहीं ले रहा मैं। नदीम भाई सवाल का जवाब है, ओके सबागुल तुमने भी जवाब दे दिया, आपका जवाब दुरुस्त है या गलत है ये हम बाद में बताएंगे। लाला कह रहे हैं कि सलीम भाई हकीकत कह रहे हैं जिगर, आजकल बीवियां तमाम शोहरों को जहर लगती हैं, कोई बोलता है कोई डर के मारे खामोश रहता है। नहीं लाला ऐसी बात नहीं है, मैं आपकी बात से इत्तफाक नहीं करूंगा। अरे वो सलीम भाई बीवियों के हवाले से बला की बारे में कह रहे थे ना, तो अयूब आफरीदी भाई जो है वो कह रहे हैं ये सही कह रहे हैं, हकीकत है कि कुछ लोग जो है वो बोलते नहीं है, कह रहे कुछ लोग डर के मारे नहीं बोलते। लेकिन एग्जैक्ट मैसेज था कि नदीम भाई हकीकत, सलीम भाई हकीकत कह रहे हैं जिगर, आजकल बीवियां तमाम शोहरों को जहर लगती हैं। हाँ कोई डर के जो है कोई बोलता है कोई नहीं बोलता, ठीक है ना। बट मैं इस बात से इत्तफाक नहीं करता हूँ, आप करते हैं?
1: नहीं
0: मैं भी नहीं करता,
1: ये तो
0: नहीं मैं भी नहीं करता। हाँ इतना जरूर है जिसकी कंची आंखें है ना बिल्ली आंखें। लाला समझ रहे वो ही बात कह सकता है। नहीं नहीं मजादन, मुझे पता है कि अयूब आफरीदी भाई भी जो है वो मजादन कह रहे हैं। अच्छा वो कह रहे हैं डर के मारे नहीं कहते, ये बड़ा इम्पोर्टेंट लफ्ज अयूब आफरीदी साहब ने कहा है। अच्छा जिनको डर लगता है ना तो वो जहर कह सकते हैं। अच्छा जी जिंदगी साथ है, अरे क्या बात है जिंदगी, करिए आपकी आवाज में सॉन्ग अगर दिल चाहे तो। ये क्या बात हुई जिंदगी, ये लफ्ज अच्छा नहीं लगा आपका, अगर दिल चाहे तो। कल का शो A1 था, अरे थैंक यू वेरी मच, आपने कल भी सुना था मगर कल आपका मैसेज नहीं आया था। एनीवे और कल संजू ने बड़ी तारीफ की थी भाई हमारे शो की, हमारे शो में हमारे मुल्क के बड़े जबरदस्त से सिंगर आए हुए थे, क्लासिकल सिंगर करम अब्बास खान साहब और उनके साहबजादे अली अहमद साहब। अरे क्या गाते थे भाई, वो जो रेल चलाते थे ना, वो जो क्लासिकल गाने वाले होते हैं जबरदस्त। खैर जी आगे बढ़ते हैं और रानी ने कहा है इब्रानी, बिल्कुल सही जवाब दिया इब्रानी जुबान, इसका मतलब है सुन रहे हैं सारे। आप यकीन माने कि अगर इसकी डिटेल बनी इसराइल के हवाले से अगर इंफॉर्मेशन मैं आपको देना शुरू करूं तो मजा आ जाए आपको, और क्योंकि अगर आपने पढ़ा हो तो और अच्छा लगता है। आप लोगों को सिर्फ इतना बता देता हूं कि 124,000 पैगंबरों के हवाले से हमने सुना ना कि 124,000 पैगंबर आए, तो उन 124,000 पैगंबरों में तमाम पैगंबर जो हैं वो हजरत याकूब अलैहिस्सलाम से, मतलब वैसे तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम से सारा सिलसिला शुरू हुआ, लेकिन ये बनी इसराइल वाला जो है, ये बनी इसराइल इस वजह से बड़ी महबूब कौम रही है अल्लाह ताला की, और बनी इसराइल में तमाम बाकी नबी जो है हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के बाद तमाम नबी जो है वो बनी इसराइल में ही आए। सिर्फ और सिर्फ हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की नस्ल में से थे, और इसका भी शजरा है, वो बहुत طویل شجرا ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک اتنا بڑا نام اور اتنا معتبر نام اور ان کا ذکر جو ہے وہ ایسا ہے کہ میں نہیں سمجھتا کہ اس طرح کا شو جو ہے وہ اس قابل ہے کہ اس حوالے سے کوئی گفتگو کی جائے. مگر ہمارے دوسرے جو انبیاء ہیں ان کے حوالے سے اگر انفارمیشن ہے تو وہ ضرور میں دے سکتا ہوں. اگر کچھ سوال کرنا چاہیں تو کر لیں. لیکن سبین سے میں نے ایک جو سوال کیا ہے، عبرانی زبان جو ہے اس وقت کس ملک میں بولی جاتی ہے یہ ضرور بتائیے گا. سبین صاحبہ خوش قسمت. ارے سنجو، سبین صاحبہ خوش قسمت، یہ مطلب کس لحاظ سے آنے کا ہے؟ اور کہہ رہی ہیں نیو لسنرز کو خوش آمدید آن ایئر بول دیجئے کہ تمام پیارے پیارے سے جو لسنرز ہیں ان کو خوش آمدید. اچھا میری انفارمیشن دوسری ہے کنان کے بارے میں، بالکل بتائیے گا. سنجو کیا ہوا، کہاں جا رہی ہیں آپ؟ شبہ خیر نہیں کیجیے بھائی، ہم آپ سے ناراض ہو جائیں گے بھائی. اب آپ یہیں پہ رہیے. لوگوں کے اوپر سے ٹرک گزر جائے تو وہ مر جاتے ہیں، آج میرے اوپر سے جہاز گزرا ہے، مجھے تو کچھ نہیں ہوا بھائی. بہت خوب. اچھا ساتھ ساتھ ہنسی مذاق بھی چل رہا ہے اور ساتھ ساتھ جو ہے وہ غصہ بھی چل رہا ہے بھائی، کیا آج موڈ ہے؟ سبا کہہ رہی ہیں کہ آرجے ندیم یقین کریں میں اچھا جی پتہ نہیں کیا لکھا ہوا، بدنام نہیں کرتی کیا مطلب ہے؟ یقین کریں کہ میں بدنام نہیں کرتی، اگر آنسر ٹھیک ہے تو ایک سانگ کی انہوں نے ریکویسٹ کر دی ہے. بھائی سبا آپ نے درست جواب دیا ہے تو آپ کی ہم ریکویسٹ پوری کریں گے، یہ ہمارا آپ سے وعدہ رہا. یعنی کہ سمجھ رہی ہیں نا آپ؟ اچھا جناب کیوں نہ ایک اور ٹریک کی جانب جایا جائے اور آپ لوگوں کی فرمائش بھی ساتھ ہی ساتھ پوری کی جائے، کیونکہ وقت بڑی تیزی سے گزر رہا ہے. تو ہمارے پیارے سے ایوب آفریدی لالا جو ہیں انہوں نے چار عدد لوگوں کو ٹریک ڈیڈیکیٹ کرنے کے لیے کہا ہے، پہلے چار اس کے بعد پھر تین، پہلے چار کے لیے یہ ٹریک ہے جن میں سبا گل ہیں اور ہنا خان ہیں اور مہنور ہیں اور مشک ہیں، ان سب کے لیے یہ پیارا سا ٹریک ہے. اللہ پڑھو.

back. बहुत जबरदस्त मैशअप है एंड आई होप कि आप सबने भी इंजॉय किया होगा और समागुल ने जो है वो थैंक्स कह दिया है और हमारी प्यारी सी शहजादी बहना जरीन नूर आ गई हैं कह रही कोई भी सॉन्ग संजू के नाम कर दीजिएगा बिल्कुल कर देंगे और जल्दी करेंगे और नदीम भाई बनी इसराइल का मतलब है इसराइल की औलाद साहबजादा बिल्कुल आपने दुरुस्त फरमाया लेकिन हमने सबीन से ये बात पूछी थी हमारी प्यारी सी बहन से मेरी प्यारी सी बहना सबीन आ जाओ और कह रही है कि ये मुझे मालूम नहीं है किस मुल्क में बोली जाती है शायद फलस्तीन में मेरी प्यारी सी बहन आपने जो सवाल किया था बहुत अच्छा किया था और अच्छा लगा मुझे लेकिन हम आपको और मालूमात देते हैं और आपको ये बताएंगे इस हवाले से यानी कि समझ रही है ना वाला कह रहे हैं जिगर बहुत खूब बहुत अच्छा लगा थैंक्स वाह वाह वाह वाह यार वैसे माशाल्लाह से बड़े एनर्जेटिक किस्म के इंसान है ये अय्यूब आफरीदी साहब दैट्स ग्रेट और एनर्जेटिक किस्म का इंसान हमारा ये सलीम मेमन भी है और आज हमारे बिरयानी वाले गायब है ये नहीं पता क्यों गायब है वकीद साहब आ गए हैं वकीद भाई कैसे हैं आप और कह रहे हैं अस्सलाम वालेकुम नदीम भाई वालेकुम अस्सलाम अच्छा फरीदा बुरहानुद्दीन जो है वो मेरी प्यारी सी बहन है वो 11 बजे वाला शो तो सुन रही है आज कहाँ गायब हो गए भाई फरीदा बुरहानुद्दीन बताइएगा बताइएगा और अमीन मेरा शहजादा कह रहा है शो फैंटास्टिक जा रहा है मजा आ रहा है भाई और नदीम भाई मेरी डेडिकेशन याद है ना वो डेट वाला मैसेज रीड कर दें जॉगिंग सॉरी यार मैं आपकी डेडिकेशन जो है वो मैं भूल गया हूं अमीन भाई तुसी मैंने दोबारा दस दो लेकिन मैं स्क्रॉलिंग कर रहा हूं यार अमीन भाई जो है अक्सर इनकी जो है डेडिकेशन मैं भूल जाता हूं आखिर में चल रही होती है लेकिन आज शो ही बीच में से स्टार्ट हुआ है अच्छा ये मैसेज मैंने नहीं पढ़ा और हमारे नवीद भाई छोटे भाई मैसेज कर दो मेरे शहजादे अच्छा जी इसमें इतने हैरान होने वाले परेशान होने की जरूरत नहीं है ने भाई कल लेट होने की वजह अच्छा अच्छा लेट होने की वजह डेट भी हो सकती है ग्रीन कार्ड वाली सॉरी आई एम जोगिंग डोंट माइंड हाय भाई जान किस बंजे की ख्वाहिश नहीं होती है मगर ऐसा कोई सीन नहीं है भाई नो प्रॉब्लम सोने हो आपको मुस्तफा भाई आपके छोटे भाई नवीद ने सलाम कहा वालेकुम अस्सलाम और एक सॉन्ग की रिक्वेस्ट भी की है भाई पूरी कोशिश करेंगे इनकी रिक्वेस्ट पूरी करने की नवीद भाई आपका मैसेज आ गया सामने भाई और मुस्तफा और नवीद को मेरी तरफ से डेडिकेट कर दीजिएगा बिल्कुल कर देंगे जिंदगी आपको गाना सुनाएंगे हम बल्कि यार क्यों ना सुनाएं अभी सुनाते हैं जिंदगी आपके लिए गाना चला रहे हैं हम और ये ट्रैक जो है जिंदगी के लिए है अगर कोई बेसुरा बना हो जाए तो प्लीज माफ कर दीजिएगा क्योंकि वो हमारी ही आवाज में सुनना चाहती हैं तो सुनिए

जब कोई प्यार से बुलाएगा तुमको एक शख्स याद आएगा, फर्स्ट टाइम सेकंड टाइम मेरा ख्याल है, मैं थोड़ा सा गाया और उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आया होगा। एक वर्ड्स मैंने आपको सुना दिया, वो फरहान भाई आपने सुना ही नहीं यार, मैं कुट्टी हूँ आपसे, मैं आपसे फीडबैक लेना चाह रहा था।

समझ गए गफरान भाई, आपका कोई कसूर नहीं है। एनीवे जनाब, तो आई होप कि जिंदगी छोटी सी ये कोशिश आपको पसंद आई होगी, और आगे बढ़ते हैं आपके मैसेजेस की जानेब। कहां गया वकीत भाई, कह रहे हैं कि नदीम भाई कैसे हैं आप, और कराची में बहुत गर्मी, मुल्तान में 5 दिन से बारिश हो रही है माशाल्लाह से। भाई पूरे पंजाब में बारिश हो रही है ये भी बताया, लेकिन पंजाब में बारिश के साथ साथ गर्मी भी अपना जोर साथ ही साथ दिखा रही है। और जनाब कसम से आप और गुफरान भाई को कोई गुलाब जामुन तो नहीं लगता है, हमें गुलाब जामुन जो है खाने में बहुत पसंद है दोनों को। और हमारे बहुत ही प्यारे से लिसनर, हमारे प्यारे से अंकल आते थे खैदाब लाला, वो गुफरान को गुलाब जामुन कहते थे, और उन्होंने गुलाब जामुन एक दफा भेजी भी थी, और गुफरान ने भी खाए थे, हमने भी खाए थे। और जनाब अयूब लाला ने और भी कुछ कहा है, थैंक यू भी कहा है उन्होंने, और अमीन का ये मैसेज हो गया था जोकिंग वाला, अगर किसी ने अपना दुख सुनाना हो तो मैं दस्तयाब हूं, छोटी सी दुकान, छोटा दुख 400 रुपए, बड़ा दुख 700 रुपए, और अगर साथ में रोना पड़े तो 1000 रुपए। सलो और संजीदा जी, जरीन नूर और मुस्कान और लाला को सलाम कहा सलीम आफरीदी ने, ओके था भाई, थैंक यू यार, अब मैं पूरा गाऊंगा। गुफरान भाई जब मुझे ओके कहते थे नदीम भाई सही है तो फिर मैं गाता हूँ। नदीम भाई मुश्क नहीं आ रही शो में, क्यों नहीं आ रही? सबा गुल बोल रही है, हो सकता है मुश्क के पेपर हो सकता है मुश्क मसरूफ हो, वो उनको हम याद करते रहते हैं। और रानी प्यारी सी बहना मेरी कह रही है कि कल के शो हकीकत में लाजवाब, और इसराइल में बोली जाती है जुबान, उन्होंने ये कहा है। और शो की कल की तारीफ करने का बहुत बहुत शुक्रिया आपका मेरी प्यारी सी बहन, इस तरह तो होता है इस तरह के कामों में। अच्छा, क्योंकि वक्त कम है और फरमाइशें आपकी ज्यादा हैं, तो अभी हम फौरन से पेशतर हमारी प्यारी सी बहन सवा, जो जिन्होंने अभी आज फर्स्ट टाइम हमें मैसेज किए हैं, तो उन्होंने कहा था कि नदीम भाई अगर आपको मेरा जवाब दुरुस्त लगा है तो जरूर मेरी फरमाइश पूरी कीजिएगा, तो उनका जवाब दुरुस्त था, तो इसलिए वो हमारी प्यारी सी नई लिसनर है हमारी बहन, तो उनके लिए ये ट्रैक एलो फड़ो।

0: ये दिल आपका हुआ ब्यूटीफुल ट्रैक।
1: और सबागुल कह रही है कि मैं साथ सबागुल साथ हूँ बस कुछ बड़ी हूँ ये कह रही है मोश्क। आप याद रखती हैं, थैंक्स बेस्ट विशेस का। और हैंडसम भूल गए हैं, अब याद करती हैं या चाचू मैं हैंडसम को याद आती हूँ, मेरा दिल खट्टा मिठा चाट वाला हो गया। अरे मोश्क शहजादी, हम तुम्हें बिल्कुल याद करते हैं और आज मैंने याद भी किया, यानी कि समझ रही है ना आप कैसी बातें कर रही हैं मोश, इस तरह ना किया करो ना शहजादी। और वकील कह रहे हैं कि नदीम भाई आप कमाल आरजी हैं माशाल्लाह से, अल्लाह पाक आपको सेहत और इज्जत वाली लंबी जिंदगी दी। बहुत बहुत शुक्रिया भैया, जाते जाते एक सिरे की गाना सही हो जाए। यार वकील भाई असल में मसला ये चल रहा है कि वक्त बड़ा महदूद सा रह गया और तीन चार फरमाइशें हैं, तो मेरे शहजादे आपका मैंने मैसेज नोट कर लिया है, आपके लिए हम जरूर चलाएंगे। वकील सराय की लिख देता है मैं, हैं जी, तो मैं थोड़े वास्ते जरूर चलाऊंगा। और सलीम भाई थैंक्स, आपके जोक अच्छे होते हैं, ये बात है मुश्क। वैसे सलीम मेमन के जोक अच्छे होते हैं, बहुत प्यार मोहब्बत से, कभी ना कभी हासिल ही कर लूंगा मंजिल अपनी, ठोकरें जबर थोड़ी है जो खा के मैं मर जाऊं। अच्छा, ठोकरें जहर थोड़ी है जो मैं खा के मर जाऊं, कभी न कभी तो हासिल कर ही लूंगा मंजिल अपनी। वाह भाई वाह, लाला सही आ रहे हैं। और जनाब जल्दी से मैं चंद मैसेजेस पढ़ूं और उसके बाद सवाल का जवाब दूंगा क्योंकि वक्त बड़ा महदूद सा है। कोई मसला चल रहा है? चलो ठीक है, आप ठीक कर लीजिए। और नहीं नहीं, इसको सही करें, वैसे ही करें जो जैसे पहले था, हाँ ऐसे रहने दें। और अब सही हो गया ये, यानी कि समझ रहे ना आप? ओके, अब सही हो गया ना जी गफरान भाई? आई एम सॉरी यार, मैंने ये नोट नहीं किया था, वरना आपको पता है कि मैं लेवल्स वगैरह देख लेता हूँ, मिक्सिंग लेवल्स जो होते हैं गफरान भाई देख रहे होते हैं, ये माशाल्लाह से हमारे साउंड इंजीनियर हैं। अच्छा जी, कादिर बख्श बलोच भाई भी आ गए हैं, और आपको और तमाम सुनने वालों को सलाम। आसिफ भाई गांव से वापस कराची आ गए हैं, माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह ताला उनको सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाए, अक्ल अता फरमाए, सबर अता फरमाए, हमारी दुआएं हैं। और सलाम कैसे हैं वालिद साहब को, संजू को और तमाम सुनने वालों को सलाम का है हमारी प्यारी सी शहजादी बहना जरीन नूर। गाना जरूर डेडिकेट होगा, डोंट वरी। और अभी फौरन से पेशतर हम गाने की जानिब जाएंगे, मगर उससे पहले मैं सवाल का जवाब दे दूं आपको क्योंकि वक्त महदूद सा है और अब गाने ही गाने ज्यादा चलेंगे। जनाब सवाल मैंने आपसे ये किया था कि वो क्या है जो खरीदने पर काला और गर्म करने पर या जलाने पर जो है लाल और फेंकने पर सफेद होता है, तो सबने तकरीबन दुरुस्त जवाब दिया था, सबागुल ने भी उसका जवाब दिया था। उसका जवाब है जनाब कोयला। कोयला जब हम खरीदते हैं तो काला होता है, जब जलाते हैं तो लाल हो जाता है, और जब फेंकते हैं तो उसकी राख सफेद होती है, यानी कि समझ रहे हैं ना आप। ये था इसका आसान सा जवाब। और अब हम जाते हैं जनाब जरीन नूर ने ट्रैक डेडिकेट करने के लिए कहा था, तो भाई संजू तुम्हारे लिए गाना है हमारी जानिब से, एल्लो फड़ो।

आए हाय जिस दिन से देखा है तुमको सनम, हाय हाय हाय ब्यूटीफुल ट्रैक आ रहा है, होप के यू लाइक इट। और अब जनाब जनाब हमने एक और गाने की जानिब जाना है और ये भी डेडिकेशन है। और ये डेडिकेशन कहाँ गई, मैं पहले आप लोगों को सुनाता हूँ। हाँ हाँ हाँ ये वाला गाना था। तो जनाब अभी हम एक और ट्रैक की जानिब जा रहे हैं और ये ट्रैक हम डेडिकेट कर रहे हैं द समवन स्पेशल। दीजिए जनाब, समवन स्पेशल दीजिए। एलो फड़ो

ब्यूटीफुल ट्रैक जनाब, एंड आई होप कि आप लोगों को भी पसंद आया होगा। और अब क्योंकि साइन आउट करने का वक्त है, लेकिन हमारे सलीम भाई बिरयानी वाले वो भी आ गए हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, और उन्होंने बहुत तारीफें की हैं। अल्लाह ताला आपको सलामत रखे, थैंक यू पसंद करने का। सबा जो है वो कह रही है कि फैसल अली खान का शो सुनती थी और उसके बाद आप लोगों का शो सुन रही हूँ और आपके शो में फर्स्ट टाइम मैसेज कर रही हूँ। सबा थैंक यू वेरी मच। जरीन ने, मेरी प्यारी सी बहन ने जो है वो थैंक यू कहा है। और अब जा रहे हैं जनाब हम लास्ट ट्रैक की जानिब, और ये ट्रैक जो है सलीम मेमन और मेरी जानिब से छोटे भाई के लिए, मुस्तफा या मुर्तजा जो नाम बताया था उनके लिए है, और उसके साथ साथ हमारे प्यारे से अमीन भाई, उनकी जानिब से भी ये ट्रैक मैं डेडिकेट कर रहा हूँ। इंशाल्लाह मुलाकात होगी आपसे जनाब कल। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।

0: Listen and watch.
1: Listen and watch.
0: Live entertainment show.
1: Entertainment show.
0: With Ajmal Khan Jovi. On every Monday and Tuesday at 1 a.m. to 3 a.m. Only on FM 100 Pakistan.
1: FM 100 Pakistan.
2: Hi, hi. जब से देखा तुझको यार हाय मेरा दिल रुक गया. ये आवाज थी अरशद महमूद की. यह अरशद महमूद आपको बताया कि ये बेसिकली तो सिंध की और सिंधी के बड़े कामयाब फनकार सिंध के और सिंध से जब सिंधी म्यूजिक से इन्होंने सफर किया उर्दू म्यूजिक की जाने तो कहते हैं कि बस रब जो चाहता होता वही है. तो उसने जिसके नसीब में जो लिख दिया वो सबब भी खुद बनाता है. फिर वो सब धीरे धीरे धीरे धीरे चलते चलते जब पहुंचे फिल्म इंडस्ट्री तक और फिर तो नाम ही फिर क्या बात इनकी. कैसेट्स बहुत सारे कैसेट बड़े कामयाब एल्बम इनकी आए कैसेट्स के दौर में सीरीज आई. फिर तकरीबन शमी मारे की ज्यादातर फिल्मों में इन्होंने गाने गाए और बड़ी कामयाब तरीन फिल्में और कामयाब म्यूजिक कामयाब बहुत ही कामयाब सॉन्ग्स जो आप सुनते भी रहते हैं. और अब इसके बाद आती हैं क्योंकि बात कुछ फिल्मी और गैर फिल्मी दोनों म्यूजिक की है और दोनों को साथ लेकर मैं चल रहा हूं. अब आ जाते हैं असद अमानत अली की आवाज. क्या खूबसूरत आवाज. अब आपको बताया कि एक उस्ताद घराने से ताल्लुक गजल गीत और फिर फिल्म तक का सफर चलते चलते कहां से कहां पहुंचे और फिल्मों में जितने नगमे गाए बड़े कामयाब रहे. उन्हीं में से एक नगमा जो मेरा भी पसंदीदा है और आपका भी यकीनन पसंदीदा है.

जी जनाब, फिर बराम तो जैसे जानते हैं आवाज आप सुन रहे थे एम मुंशी साहब की। और अब इसके बाद यूं करते हैं कि हम आते हैं एक और आवाज की जानिब। ये आवाज है गुलाम अब्बास खान साहब की।

ये आवाज थी महनाज की फिल्म खुशबू के लिए। और अब यूं करते हैं कि शामिल करते हैं हम आवाज एनियर और शमसा कवल की।

0: सूफी स्पेशल क्वालिटी सोप और सेवैया।
1: कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, हैदराबाद, रहीम या खान, मुल्तान, अबटाबाद, गुजरात, जेलम, अक्रॉस पाकिस्तान, दिस इज FM 100.
2: अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान।

कोई है जो आवाज देता है, कोई है जो हर दिल में रहता है, कोई है जो आसमां से पानी बरसाता है, कोई तो है जो अंधेरों से उजाला करता है, कोई है जो आवाज देता है, कोई है, कोई है।

0: कोई है जो धड़कन में रहता है।
1: सुबह जब हो जाती है एक खुशबू सी फैल जाती है, परिंदे चहचहाते हैं, प्यार भरी गीतों से जग को फिर जगाते हैं। हर तरफ से एक ही सदा आती है और हमको ये समझाती है, कोई है जो आवाज देता है।